दोस्तों, कभी कभी घर की सफाई करते हुए जब कोई पुरानी डायरी, पुराना खत या स्कूल के दिनों का कोई ग्रीटिंग कार्ड मिल जाता है तो हाथ वहीं ठहर जाते हैं ना, हम वक्त में पीछे लौट जाते हैं। देखा जाए तो आज हमारे पास हर चीज के लिए ऐप है, हर बात के लिए शॉर्टकट है, पर क्या वो जो ठहराव था पुराने दौर में, जब हम हफ्तों किसी के जवाब का इंतजार करते थे, वो सुकून आज के इंस्टेंट रिप्लाई में है? शायद नहीं, क्योंकि इंस्टेंट रिप्लाई में वो सुकून कहीं खो सा गया है। और इसीलिए तो कहती हूँ कि पुरानी बातें ना रह रहकर याद जरूर आती हैं, पुराने गानों की तरह। लेकिन फिलहाल आपके लिए एक बढ़िया सा गाना प्ले करेंगे। नहीं, पुराने गाने तो और भी बढ़िया होते हैं भाई, आप जानते हैं ना कि मेरा तो भाई राबता है गोल्डन एरा के सॉन्ग से। लेकिन अभी फिलहाल ये गाना एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए मुझे, इट हैपेंस में, आपके अपने रेडियो प्रस्वानी 107.01 AM।

0: था इट हैपेंस पर सताक्षी का आपके साथ एक और साथ। आज हमने बहुत सारी बातें शेयर की एक दूसरे के साथ, बहुत सारे किस्से और बहुत सादा जिंदगी को समझने की कोशिश की। लेकिन जिंदगी जो है ये पूरी तरह से कभी तक किसी को समझ में आ नहीं पाई है, लेकिन उसके बाद भी इसे समझने की कोशिश जो है वो जरूर जारी रहनी चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल फिर से कुछ खास बातों और जज्बातों के साथ हमारे इसी इट हैपेंस के सफर में। अब आज के सफर से सताक्षी लेगी इजाजत। हैव अ ग्रेट डे एंड ऑफ कोर्स गुड मॉर्निंग।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

हाँ तो भाई, मेच्योरिटी आने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जिम्मेदारियों के बोझ तले दबते चले जाएं और आप कहें कि लोगों की हमसे एक्सपेक्टेशन है, हम तो मेच्योर हो रहे हैं। देखिए, आप जितनी भी जिम्मेदारी निभाएं, उन सबके बीच जो सबसे इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है उसे आपको भूलना नहीं है, और वो है आपकी, आपके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी हेल्थ, आपका मेंटल पीस और आपके सपने, ये आपकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होने चाहिए। दूसरों की केयर जरूर कीजिए, लेकिन खुद को दांव पर लगाकर नहीं। आप अपनी कमियों को एक्सेप्ट कीजिए, अपनी ताकतों को पहचानिए। याद रखिए, जिंदगी आपकी है और इसे संवारने की जिम्मेदारी भी आपकी खुद की है। तो चलिए, बाकी जिम्मेदारियों से थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं और खुद की जिम्मेदारी की ओर इस अगले गीत के साथ आगे बढ़ते हैं। इंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

कुछ लोगों की आदत नहीं होती है कि उनकी तारीफ की जाए। वो खुद तो कभी खुद की तारीफ करते नहीं है, और अगर कोई और कर दे तो भी बड़ा शर्मा जाते हैं। मैं कहती हूँ क्यों भाई, क्यों ना प्राउड फील करें आप खुद पे। जी जान लगा दिया है आपने उस मुकाम पर पहुंचने के लिए जहां पर आज आप खड़े हैं। जाने कितने दिन खर्च किए, जाने कितनी रातें काली की, और न जाने कितना रोए हैं आप, न जाने कितना कुछ खोया है आपने इस सफर में यहां तक पहुंचने के लिए। और अगर कभी कोई ये कहता है कि आपको बहुत आसानी से सब कुछ मिल गया है, तो जरा उनसे कहिए कि वो आकर आपके पांव के छाले देखें, वो रास्ते देखें जिन पर से आप होकर गुजर कर आए हैं, आपका अतीत आपका पास्ट देखें जाकर। इसलिए अगर कोई आपकी तारीफ करे तो अपने कंधों को थपथपा लिया करिए या थोड़ा सा मुस्कुरा दिया करिए, क्योंकि आपने जो मुकाम हासिल किया है वो सबके बस की बात नहीं है। और आपके नाम, जी हाँ, सिर्फ आपके नाम है ये अगला ट्रैक। इसे सुनिए और सताक्षी के साथ यूं ही सुनते रहिए गाइड हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

ग्रेटिट्यूड लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है? कई बार ना मुझे ये सवाल सुनने को मिलता है और मैं कितनी बार आपसे कह चुकी हूँ कि बॉस सबसे इम्पोर्टेंट है. यू नो, हमारे पास क्या नहीं है इसकी लिस्ट हमारे पास हमेशा तैयार रहती है, हमारे पॉकेट में, हमारे वॉलेट में, हमारे पर्स में, कुछ नहीं तो हमारी जबान पे हमेशा रेडी है कि यार मेरे पास ये नहीं है, मुझे भगवान ने ये नहीं दिया, उसके पास तो ये है. लेकिन ये खूबसूरत सुबह, हमारी सांसें, हमारे काम करने के लिए हाथ और हमें सपोर्ट करने वाले लोग, क्या इनके लिए कभी थैंक यू बोला है? क्या इनके लिए कभी ग्रेटिट्यूड फील किया है? या कभी आपको ऐसा लगा है कि आप कितने लकी हैं कि आपके पास ये सब कुछ है? यू नो, जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ अपने दिन की शुरुआत करते हैं तो आपकी एनर्जी पूरी तरह बदल जाती है. तो आज जब आप लोगों से मिले तो एक स्माइल के साथ मिलिए, किसी के काम की तारीफ कर दीजिए. आपका एक छोटा सा जेस्चर भी लोगों का पूरा दिन बना सकता है. ठीक है जी, तो ख्याल रखिए और सदाक्षी के साथ सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी. आप सुन रहे हैं इट हैपेंस.

वक्त हो गया है हमारी मोटिवेशनल बातें यहीं पर पॉज देने का, लेकिन हमारी एनर्जी और हमारी पॉजिटिविटी पूरे दिन हमारे साथ रहने वाली है ना। सो थैंक यू सो मच मुझे सुबह सुबह अपने घरों, अपनी गाड़ियों और अपने कानों में जगह देने के लिए। जाते जाते बस यही कहूंगी कि करियर शिद्दत से बनाइए, जिम्मेदारियां मोहब्बत से निभाइए और अपनी जिंदगी को खुलकर जीते रहिए। होती है कल फिर आपके साथ मुलाकात। कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसे बने हुए हो। देखो याराना फिल्म दी स्टोरी हैगी है जिहड़ी उह ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने जद के स्क्रीन प्ले विजय कौल ने लिखा हैगा। डायलॉग कादर खान दे सी, प्रोड्यूसर एम ए नाठिया वाला सी, गीतकार अंजान, जद के संगीतकार राजेश रोशन सी। फिल्म दे कोल 7 गाने रखे गए सी। इन्हां गाणियां विच छूकर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा यार आना, मतलब बहुत ज्यादा हिट होया सी। तीनों गाने सदाबहार है कि नहीं। इस फिल्म दे लई अमजद खान नु बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया सी। छूकर मेरे मन को गाना रविंद्रनाथ टैगोर की एक कंपोजिशन तो लिया गया सीगा। इस बारे होर भी तुहानू दस्सदे आं, पर पहले गी सुन लो।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो, जां 132 ANT यानी के 132-268 उते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 FM ते जी। आज जे संदेश अलग दे नाल से बने हुए हूँ। देखो, नीतू सिंह ते अमिताभ बच्चन दी कहानी दस रहे सी यारा मूवी दी। तां नीतू सिंह ने नवीं फिल्मां साइन करना बंद कर दिता सी। दोवां दी विआह दीआं तैयारियां चल रही सी। फिल्म दा एक गाणा सारा जमाना हसीनों का दीवाना कोलकाता दे स्टेडियम विच शूट होया सी। जद इस गाने दी रिकॉर्डिंग हो रही सी तां रिशी कपूर दी याद विच नीतू सिंह रो रही सी। टेक्निकल फॉल्ट की वजह नाल उन्हां दी गल रिशि कपूर दे नाल नहीं हो पा रही सी। उधर मुंबई विच रिशि कपूर परेशान सी। नीतू सिंह नूं रोंदा देख के अमिताभ ने ना वजह पुछी। नीतू ने कहा है कि वह मुंबई वापस जाना चाहती है। अमिताभ ने प्रोड्यूसर नूं बुलाया ते नीतू सिंह दी मुंबई दी फ्लाइट टिकट बुक करन लई कहा। अमिताभ ने नीतू दे बिना गाने ते कल्ले ही परफॉर्म कीता। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਾਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੂ ਸਿੰਘ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਬੇਹੱਦ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਸੀ।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना दवाई हेल्थ चेक सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। ਦੇਖੋ ਸਰਪੰਚ 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜਲੇ ਸਿਨੇਮਾ ਘਰਾਂ ਚ।

0: है वहाँ
1: सब कुछ क्वालिटी स्पाइसेस लेंटिल्स राइस फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट लैम्ब चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए
0: अरे वाह इंटेलिजेंट हो गई हो
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999 ओपन 7 डेज फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au 1/268 Kingston Road, Slacks Creek, phone number 3804-3818. That's 3804-3818.
2: क्या आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद कॉल नाउ ऑन 04111270035 रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रस्तानी वन सन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। खैर वेलकम तो मैं थोड़ा करता है गया, पर हुण वेला हो चुका है थोड़े तो टाटा बाय बाय कहण दा, थोड़े तो इजाजत लैण दा। यार उन्हां दी थोड़ी जी गल होर कर दिंदी हां मैं। अमिताभ ने ना सारा जमाना गाने विच एक खास तरह दे इलैक्ट्रिक ड्रैस पाई सी 1979 यानी कि 1979 विच अमेरिकन फिल्म द इलैक्ट्रिक हाउसमैन विच रॉबर्ट रेडफोर्ड ने इलैक्ट्रिक ड्रैस पानी पाई सी ना, उसे तरह थी। उधर ए आइडिया प्रोड्यूसर दे मन विच आया, लाइट नू ऑन ऑफ करन दा बटन अमिताभ दे हाथ विच सीगा। 2.25 दे बजट विच बनी इस फिल्म ने 3.5 करोड़ दा बिजनेस कीता सी। एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई सी। ते यही कहानी सी कि इस फिल्म दे विच जिहड़ा गाने दे विच नीतू सिंह नजर नहीं आई बात दे विच, है ना। कहानी बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी तुसी अपनी कहानियां जरूर दस रहा करो, साथ नाल जुड़ते रहा करो। रेडियो ब्रिसोनी वन सन वन एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो ब्रिसोनी@ब्रिसोनी.com साथ ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाना है अपना साथ गलबात जरूर करते रहा करो। बाकी कल कर दे मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: KR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
1: Hi, this is Amitabh Bachchan.
2: And you are listening to Radio Briswani.
3: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. And you are listening to Radio Briswani.
4: Hi, this is Salman Khan. And you are listening to Radio Briswani.
5: Hi, this is Deepika Padukone. And you are listening to Radio Briswani.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, I'm Tulsi Kumar. And you are listening to Radio Briswani.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shah Rukh Khan.
9: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
10: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाइप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
9: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
10: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
11: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहां कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मटिंटार नेंडी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। शोक व्यक्त करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रोज सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसके साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।

सर तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारी खातिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूं।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अरशाद फ्रॉम अरशाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

कैसे हो आप सब? सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है इवनिंग वाइब में। ट्यूसडे का दिन है, काम चल रहा है और जोरों शोरों से काम चल रहा है। और क्या चल रहा है? वेल, अभी तक जो चल रहा था वो तो चलता रहेगा, लेकिन अब जो चलने वाला है वो और भी ज्यादा मजेदार होने वाला है। वेल, ऑफकोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट इवनिंग वाइब। आपको तो बताइए, ये प्रोग्राम क्या क्या मजेदार चीजें आपके लिए लेकर आता है, आपको स्ट्रेस मुक्त करने, आपको एंटरटेन करने और आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने। यही तो हमारा परम कर्तव्य है और उसका पालन हम पूरी तरह से करते हैं। आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा, लगता है तुमने सुबह सुबह या फिर अभी जो है दोपहर में कुछ ना कुछ खतरनाक खा लिया है या फिर तुमने कुछ बहुत खतरनाक पढ़ लिया है शुद्ध हिंदी में। वेल, आपने सही सोचा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ है और आज इस्तेमाल होता है या नहीं होता है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की एक हेल्दी रिचुअल के साथ, और वो हेल्दी रिचुअल आपको पता ही है। और अगर नहीं पता है तो हम आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं डीप ब्रेथ एक्सरसाइज की, यानी कि लंबी गहरी सांसों की। ये एक बहुत ही अच्छा रिचुअल है अगर आप इसे प्रैक्टिस करते हो किसी भी चीज को शुरू करने से पहले, या फिर अगर आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कोई चीज आपके दिमाग पर बहुत ज्यादा वे कर रही है, तो आप इस चीज को कर सकते हो। यू नो व्हाट, यू आर गोना फील सो बेटर, सो मच बेटर दैट आप उसको सच में करना शुरू कर दोगे ऑन डेली बेसिस। सो आइए सबसे पहले करते हैं। क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और इसी के साथ अब शुरुआत करते हैं खूबसूरत से गानों के साथ। जी हाँ, खूबसूरत से गाने के साथ शुरुआत होगी। और ये जो गाना है इसका नाम है शिद्दत, और शिद्दत का ये टाइटल ट्रैक है। शिद्दत एक मूवी है जो कि 4 साल पहले आई थी और इसके गाने काफी अच्छे हैं। सो उसी एक गाने से शुरुआत हम करने वाले हैं और फिर करेंगे हम बहुत सारी बातें, क्योंकि बातें अभी शुरू हुई हैं मेरे दोस्त, और अभी तो बहुत सारी होने वाली हैं।

तुझे। आए आए

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ मजेदार शुरुआत हो गई है। अब जरा मौसम की तरफ चलते हैं और वो देखते हैं कि क्या मौसम भी मजेदार रहने वाला है या नहीं, क्योंकि शुरुआत तो मजेदार हो सकती है। मौसम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूड को अफेक्ट करता है और हमारे प्लान्स को भी अफेक्ट करता है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट इट। सबसे पहले तो मैक्सिमम टेम्परेचर के बारे में बात करते हैं, विच इज 22 डिग्री सेल्सियस, और अगर अभी के बारे में बात की जाए तो 22.1 डिग्री सेल्सियस के करीब है। फील आपको ऑन द अदर हैंड हो रहा है 20.5 डिग्री सेल्सियस, मतलब 20.5 डिग्री सेल्सियस के करीब आपको फील हो रहा है। अच्छा, ये तो हुई दिन की बात, अब जरा रात की बात करते हैं। तो 12 डिग्री सेल्सियस यानी कि 12 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट आप देख पाएंगे। जी हाँ, आपने सही सुना, 20% चांसेस बारिश के, जो कि बीच बीच में मुझे होती हुई नजर आ रही है बूंदाबांदी। और या ऐसा ही रहने वाला है मौसम आज के लिए। एयर क्वालिटी है एकदम एक्सीलेंट। और आज की बात हो गई, अब जरा कल की जाए तो 22 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहेगा मैक्सिमम वेडनेसडे को यानी कि कल, और साथ में 20% चांसेस होंगे बारिश के। लेकिन थर्सडे को मुझे ज्यादा बारिश दिख रही है यानी कि 50% चांसेस है बारिश के विद अगेन 22 डिग्री सेल्सियस मैक्सिमम टेम्परेचर। सो आज और कल में जितनी है उससे ज्यादा दिख रही है थर्सडे को, तो उसके लिए रेडी हो जाइए। और अगर आप सोच रहे हैं कि नीवेश शर्मा ये सब तो बता दिया, अब हमें ये बताओ कि पूरी तरह से सूरज कब खिलने वाला है खूबसूरत तरीके से, तो वो आपको इंतजार करना पड़ेगा सैटरडे तक का, क्योंकि सैटरडे को मुझे पूरी तरह से सूरज यहाँ खिलखिलाता हुआ नजर आ रहा है। और ऐसा लग रहा है कि उस दिन होगा ऐसा ही, मतलब सूरज जो है वो पूरी तरह खिलखिलाएगा विदाउट एनी बादल, कोई बादल की सिचुएशन नहीं होगी, कोई बारिश की सिचुएशन नहीं होगी, और आप मजे से उस दिन को, उस छुट्टी को धूप में बैठकर बिता पाएंगे। लेकिन उसके अलावा इसमें चेंजेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी दूर की बात हो रही है, मतलब आज ट्यूजडे है, सैटरडे को ऐसा दिखा रहा है, तो फिर से अगेन चेंजेस हो सकते हैं, बिकॉज मौसम है अनप्रेडिक्टेबल है, और आपको पता ही है किससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। जी हाँ, इसी के साथ ये है मौसम का हाल। और अब जरा एक खूबसूरत सा गाना आपके लिए प्ले करते हैं।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: ਯਾਰ ਸਾਗ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ।
2: ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਘਰ ਆਣਾ, ਅਸਲੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮੈਂ ਸਾਗ ਬਣਾ ਕਰ ਖਿਲਾਉਂਗਾ ਤੁਮੇ।
1: ਕਹਾਂ ਯਾਰ, ਆਜ ਕਲ ਅਸਲੀ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਿਲਤੇ ਕਹਾਂ ਹੈ।
2: ਕਿਸ ਦੁਨੀਆ ਮੈਂ ਹੋ ਭਾਈ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਫੂਡ ਸਰਵਿਸ ਮੈਂ ਟ੍ਰਿਪਲ ਰਿਫਾਇੰਡ ਪੀਵਾ ਦੇਸੀ ਘੀ ਮਿਲਤੇ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਤੇ ਹੈ 100% ਪੀਵਾ ਕ੍ਰੀਮ ਸੇ, 99.9% ਪੀਵਾ ਮਿਲਕ ਫੈਟ ਸੇ, ਔਰ ਤੋ ਔਰ ਹਰ ਮੌਸਮ ਮੈਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣੇ ਕੇ ਸਾਥ ਸਾਥ ਹਾਈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਮੈਂ ਵੀ ਆਤੇ ਹੈ।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
6: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
5: अरे वाह, इनका पता बताना।
6: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत हो गई है। मौसम के बारे में आपको बता दिया गया है और अब जरा चलते हैं फरमाइशों की तरफ, यानी कि प्रोग्राम में आप अपनी भागीदारी कैसे रख सकते हो। आप लोग बोलोगे हैं पार्टनरशिप, वाओ निव्या शर्मा, वेल एग्जैक्टली नॉट पार्टनरशिप, बट आप पार्टिसिपेट जरूर कर सकते हो हमारे इस प्रोग्राम में, और वो अपने फेवरेट गानों के द्वारा, मतलब आप अपने फेवरेट गाने डेडिकेट कर सकते हो, रिक्वेस्ट कर सकते हो और उनको हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बना सकते हो। खुद भी सुन सकते हो, आई मीन इट्स अ गुड थिंग, राइट? सो व्हाट यू गोना डू इज, आपको अपना फोन उठाना है, नंबर डायल करना है, नंबर है +9182888717701। आई रिपीट, +9182888717701। तो बस फिर जल्दी से फोन उठा लीजिए, नंबर डायल कर दीजिए, भेज दीजिए हमें अपनी फरमाइश, और अगर आप किसी को स्पेशल फील करवाना चाहते हैं तो डेडिकेट कर दीजिए किसी को गाना वाया कॉल, मैसेज या व्हाट्सएप। तो जल्दी से आ जाइए, यहाँ पर हमारी तरफ से एक और जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ बहुत हैवी फील हो रहा हुआ है ये बताते हुए। जी हाँ, अगर आप फीफा फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात करने वाली हूँ। एक टीम, एक बहुत ही लेजेंडरी प्लेयर का सपना खत्म हो गया। जी हाँ, जैसे मैंने कल आपको बताया था कि रोनाल्डो ने कहा था कि वो ये आखिरी फीफा खेल रहे हैं, मतलब ये फीफा 2026 विल बी हिज लास्ट फीफा वर्ल्ड कप, एंड इसके बाद वो कोई और फीफा वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। जी हाँ, और उन्होंने ये भी कहा था कि आई मीन दिस विल बी माई लास्ट फीफा वर्ल्ड कप, बट आई होप टुमारो इज नॉट माई लास्ट गेम। मतलब स्पेन के खिलाफ पोर्चुगल की जो गेम थी वो अब हो चुकी है और उसमें उनको शिकस्त मिल चुकी है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पोर्चुगल एंड क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वो वर्ल्ड कप ड्रीम जो है वो लिटरली आंसुओं के साथ खत्म हुआ है। जी हाँ, पोर्चुगल को 1-0 से डिफीट मिली है स्पेन के खिलाफ और यहाँ पर राउंड ऑफ 16 से उन्हें बाहर होना पड़ा है 2026 के फीफा वर्ल्ड कप से। और आपको मैं बता दूँ कि टेक्सस में ये हो रहा था मैच और 41-year-old क्रिस्टियानो रोनाल्डो लिटरली लेफ्ट द पिच इन टेयर्स एंड उन्होंने पहले ही कंफर्म कर दिया था और फिर से किया कि दिस वॉज हिज फाइनल वर्ल्ड कप अपेयरेंस। आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, आई डोंट नो, आई मीन जो एरा है वो खत्म हो गई है या द एंड ऑफ एन एरा, ये कहना जो है वो सही रहेगा। कल ही की बात मैं कर रही थी, कल जब नेमार जूनियर ने आंखों में आंसू लेके अलविदा कहा था, उन्होंने तो इनफैक्ट इंटरनेशनल फुटबॉल को ही अलविदा कह दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जब शुरुआत की थी तो वो बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की बट ये हो नहीं पाया, एंड ही वॉज लिटरली इन टीयर्स। एंड नॉट जस्ट हिम, पूरी की पूरी ब्राजील की टीम जो है वो टीयर्स में थी, बट नेमार जूनियर ने लिटरली रिटायरमेंट ले ली और ब्राजील का सपना चकनाचूर हुआ। नेमार जूनियर को झटका लगा उसमें बहुत ज्यादा और यहाँ पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी वैसे ही गए जैसे कल नेमार जूनियर जा रहे थे। एंड जैसे मैंने कहा कि व्हेन इट कम्स टू द टॉप प्लेयर्स इट वाज मेसी, रोनाल्डो एंड मेसी, एंड फिर उसके बाद नेमार जूनियर, मतलब ये तीन प्लेयर्स की बात जो है वो अलग मानी जाती थी और तीनों ही, आई मीन मेसी के अलावा जो है वो दो ने अलविदा कह दिया है। एंड आई डोंट नो व्हाट टू से टू दैट, मुझे समझ नहीं आ रहा है, बट जो फुटबॉल फैंस हैं, जो सॉकर फैन हैं, वो शायद ये इमोशन समझ पाएंगे। बट डेफिनेटली इट्स एन एंड ऑफ एन एरा एंड आई होप जो फैंस हैं वो इस चीज़ से कोप अप कर पा रहे हो एंड वो अच्छे से अलविदा कह पाए अपने लेजेंड को। दैट्स ऑल आई कैन से। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से जो कि अगेन ज़बरदस्त है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है. असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन. असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां. स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां. नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहाइश लई वरती जावेगी. असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो. डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो. क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित. ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन.
3: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे. ये तो बहुत अच्छा आइडिया है. मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का.
4: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में.
4: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा.
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी. डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें.
0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa. Te law di entry cases nu handle karan ji o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense which 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws which bhi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
5: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate, first issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.
6: जी दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM. शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ. सो दोस्तों, सिसिले जो कि इटली में है, उसके आसमान में रेड ह्यूज छा गए. जी हाँ, एक वीडियो वायरल हो रही है इंटरनेट पर जो कि सिसिली के आसमान की है, जहां पर नाइट स्काई जो है एकदम लाल जो है वो हो गया. और इसके पीछे का रीजन था माउंट एटना. जी हाँ, जो कि यूरोप का मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो है, वो इरप्ट हुआ थर्सडे को, और इसने जो लावा फ्लोस था उसको डाउन जो है उसने लावा को जो है वो नीचे को भेजा, और साथ में जो स्लोप्स थे और जो लाइटिंग थी उसने नाइट स्काई को, सिसिली के नाइट स्काई को एकदम ड्रामेटिक रेड ह्यूज में बदल दिया. जी हाँ, अगर आपने ये नहीं देखा तो जरूर देखिएगा. इनफैक्ट इफ यू डोंट नो अबाउट समथिंग लेट मी टेल यू. जी हाँ, अगर आपको नहीं पता है, जैसे हम समिट्स करते हैं माउंटेन के, वैसे ही लोग वॉल्केनो समिट्स भी करते हैं. मतलब हम पहाड़ों को चढ़ने जाते हैं, क्लाइंबिंग करने जाते हैं, वैसे ही लोग वॉल्केनोस को क्लाइंब करने भी जाते हैं, उधर भी समिट होते हैं. एंड देर आर गाइड्स जो कि पर्टिकुलरली प्रोफेशनल है, इसमें लोगों को लेकर जाते हैं. अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी, एक गाइड जो कि अपने ग्रुप को लेकर गया था एक वोल्केनो के पास, जो कि उसको उन्हें दिखा रहा था कि ऐसे होता है वोल्केनो जो है वो लावा ऐसे निकलता है, इधर को निकलता है, वो पूरा का पूरा ब्लैक एरिया था जो कि लिटरली लावा से भरा हुआ था। लेकिन ऑफकोर्स वो लावा जो है वो बहुत टाइम से निकला नहीं था, इसीलिए वो गाइड जो है वो वहां पर उन ग्रुप को जो है वो लेकर गया था। लेकिन गेस व्हाट, वो उन्हें समिट करवाने लेकर जाता है और एकदम से वोल्केनो वहीं इरप्ट हो जाता है। वहां पे लोग भाग रहे होते हैं, लिटरली देवर रनिंग फॉर देयर लाइफ। एंड आई वाज लाइक, मतलब ठीक है यू वांट टू डू एडवेंचर्स, बट आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आया कि वोल्केनो पर समिट करने का रीजन क्या हो सकता है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि ठीक है, मतलब वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, दे आर वेरी यू नो, मतलब खतरनाक सा उनका लुक आता है, बहुत ही जबरदस्त सा लुक आता है, नजारा बहुत जबरदस्त होता है, लेकिन कितना खतरनाक भी है, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक है। लिटरली वो ग्रुप जो है वो गया था, वो वहां से भाग रहे थे लिटरली, उनके ऊपर जो है वो वोल्केनिक वो जो है इरप्शन जो है उसकी चीजें जो है वो पार्टिकल्स जो है, बड़े बड़े पार्टिकल्स जो है वो आके गिर रहे थे और वो दे वर लिटरली रनिंग फॉर देयर लाइफ। सो मैं ये कहूंगी कि लोग जो है वो लिटरली बहुत ही ज्यादा तूफानी एडवेंचरस है, और मैं अपने एडवेंचरस लिसनर्स को कहूंगी कि कुछ भी कीजिएगा बट किसी वोल्केनो को समिट करने मत जाइएगा, बिकॉज इट कैन बी रियली रियली डेंजरस, बिकॉज जितना मैंने उसको देखा, रिसर्च किया, इट कैन बी रियली डेंजरस। सो या यहां पर भी जो माउंट एटना है वो भी इरप्ट हुआ और उसने खूबसूरत जो है वो नजारा जो है वो सिसिली के आसमान में भेजा, और साथ में ये इरप्शन जो है वो हाई एल्टीट्यूड से हुआ और फिर उसके बाद जो है वो धीरे धीरे धीरे धीरे नीचे आया और फिर वोल्केनिक ट्रेमर्स हुए, मॉल्टन रॉक और वो सारी की सारी चीजें जो है वो स्टेडिली डाउन हिल की तरफ आई। जैसे कि अगर आपने कभी भी किसी वीडियो में देखा है माउंटेन या फिर वोल्केनो को इरप्ट होते हुए, तो फिर आपको पता होगा व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बट द थिंग इज कि एडवेंचर करना इज गुड, बट प्लीज वोल्केनिक समिट्स मत कीजिएगा। या मैं रियली ये कहना चाहती हूँ। जी, इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि अगेन जबरदस्त है।

पता कि आपका सपना है किसी माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई करने का, या किसी और यू नो एल्पाइन्स में किसी माउंटेन की चढ़ाई करने का, या किसी भी मतलब बेसिकली माउंटेन टॉप को चढ़ने का, मुझे नहीं पता आपका है ये सपना है या नहीं, लेकिन यहाँ पर रॉबर्ट्स आपको इसमें भी मात देने के लिए रेडी हो गए हैं। जी हाँ, मतलब आपने बहुत सारी चीजें देख ली रॉबर्ट्स को करते हुए, काम कर रहे हैं फैक्ट्रीज में, काम कर रहे हैं, मॉन्क बन गए हैं, जी हाँ अब तो मतलब बेगर भी बन गए हैं लिटरली। मतलब एक रॉबर्ट जो है वो भीख मांग रहा था चाइना में, कितनी सारी चीजें रॉबर्ट्स कर रहे हैं, मतलब ऐसी खतरनाक खतरनाक चीजें जो आपने सोची भी नहीं थी। अब रॉबर्ट्स कह रहे हैं कि ठीक है यार, मतलब इतनी सारी चीजें कर ली तो माउंटेन्स को भी जरा क्लाइम कर लिया जाए। जी हाँ, वैसा ही हुआ है कुछ, क्योंकि एक ह्यूमनॉइड रॉबर्ट पैम्बा जो है उन्होंने क्लाइम किया है 6000 मीटर्स का एक माउंटेन, और वो चाह रहे हैं कि वो माउंटेन एवरेस्ट को चढ़े, और माउंटेन एवरेस्ट की चढ़ाई से पहले उन्होंने ये माउंटेन की पीक को छुआ है। जी हाँ, सो माउंटेन एवरेस्ट जो है वो इवेंचुअली वो सपना है उसकी, उसका समिट करना, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अ ह्यूमन, आई एम टॉकिंग अबाउट अ रॉबर्ट। जी हाँ, अ ह्यूमनॉइड रॉबर्ट। सो ये ह्यूमनॉइड रॉबर्ट है, इसका नाम है पैम्बा, और इसे मॉडिफाई किया गया है यूनिट्री G1 वालों के द्वारा, और इसे बिल्ट किया गया है, ये यूनिट्री G1 है और पैम्बा नाम है इसका, और ये बनाया गया है जियोलॉजिक डोम कंपनी के द्वारा, और इसने हिस्ट्री जो है वो क्रिएट कर दी है बाय समिटिंग एक्वाडोर्स 6200 मीटर माउंट चिम्बोराजो। जी हाँ, एक्वाडोर का जो माउंटेन है चिम्बोराजो उसको क्लाइम कर लिया है, और उसकी जो हाइट है वो 6200 मीटर्स है। जी हाँ, ये 16R का एटोनमस जो है उसे असिस्ट किया गया और क्लाइम किया गया, और ये मेजर टेस्ट जो है वो ये देखने के लिए था कि क्या माउंटेन एवरेस्ट को चढ़ा जा सकता है। आप लोग बोलोगे कि ये क्या बात हुई, मतलब क्या बात हुई, अब रॉबर्ट कुछ भी करना चाहेंगे तो वो कर लेंगे क्या? मतलब ठीक है, इंसानों के लिए मुश्किल होता है, हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, इसलिए हम माउंटेन एवरेस्ट को जल्दी जल्दी नहीं चढ़ सकते, लेकिन रॉबर्ट को क्या मतलब रोकने वाली चीज है? माउंटेन्स में रॉबर्ट तो एकदम जल्दी जल्दी भाग के चढ़ सकते हैं। वेल, आपने ये सही कहा, लेकिन आप सोचिए कि ये सपना, मतलब आप चाइना की मैराथन्स, उनके कुंग-फू कराटे तो वो कर ही रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, राइट, बॉक्सिंग हो रही थी, मैराथन दौड़ रहे थे, अब यहां पर ये माउंटेन समिट भी करना चाहते हैं। दे आर लाइक कि ओके ठीक है, मतलब इतनी सारी चीजें इंसान कर रहे हैं तो थोड़ी बहुत हम भी कर लेते हैं, एंड माउंटेन समिट उसमें से एक है, एवरेस्ट की चढ़ाई करना चाहता है ये माउंटेन, और उससे पहले ये प्रैक्टिस कर रहा है इस वाले माउंटेन पे। इमेजिन इमेजिन, अब तो मुझे लगता है कि मुझे भी इस बारे में सोचना चाहिए, बिकॉज लेट्स बी रियल, रॉबर्ट्स चढ़ रहे हैं, हम कैसे पीछे रह सकते हैं? आप लोग बोलोगे कि नीवे शर्मा तुम रहने दो, तुम माउंटेन एवरेस्ट और एक्वाडोर सब छोड़ दो, तुम बाकी चीजों पर ध्यान दो। वेल ठीक है, अगर आप ऐसा कहते हो तो। इसी के साथ यहाँ पर एक फरमाइशी गीत आप सबके लिए, और ये फरमाइशी गीत आया है हमारे बहुत ही खास लिसनर जस्सी जी की तरफ से। जी हाँ, गाने का नाम है जट लुधियाने दा, क्या बात है, लुधियाना शहर है पंजाब में और पंजाब है इंडिया में। जी हाँ, पंजाब में लुधियाना शहर, अगर आप पंजाबी हो तो आपको तो पता ही होगा, लेकिन इन केस जो लोग पंजाबी नहीं है उनको मैं बता दूं कि जबरदस्त शहर है और खाना पीना बहुत मजेदार है वहां का, तो जरूर जाइएगा और जरूर खाना पीना खाइएगा। और थैंक यू सो मच जस्सी जी, हमेशा की तरह खूबसूरत और बेमिसाल जबरदस्त फरमाइशों के लिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, ऐसे ही सुनते रहिए। ये रहा आपका गाना जट लुधियाने दा ओरिजिनल, जी हाँ, नॉट द बॉलीवुड वाला, द ओरिजिनल सुरेंद्र कौर और हरचरण गरेवाल की आवाज में।

0: Imroz Muhammad and Secretary Aman Kumar connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
1: LKR Event proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
3: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल सीईसी अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
4: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, तां इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निव्या के साथ। दोस्तों, एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है और उसके बारे में हमें भी बात करने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये वीडियो में अर्थक्वेक आ रहा है। जी हाँ, भूकंप आ रहा है। आप लोग बोलोगे कि ओ माय गॉड, तो फिर तो मतलब काफी डेंजरस वीडियो होगी। वेल नो, इट्स नॉट डेंजरस, इट्स फनी। जी हाँ, आप लोग बोलोगे फनी, अर्थक्वेक आ रहा है, भूकंप आ रहा है, मतलब ऐसे में कितनी सारी गड़बड़ चीजें हो सकती है। सो ऐसा क्या है इस वीडियो में जो इतनी फनी है? वेल अपनी जरा सांसें थाम कर रखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाली हूँ उसके बाद आपको भी हंसी आने वाली है और आपको ऐसा लगेगा कि ये दुनिया कितनी अब्सर्ड है। जी हाँ, सो एक व्यक्ति जिसकी ये वीडियो वायरल हो रही है, वो भूकंप आने पर उसके घर में एकदम ट्रेमर्स जो है वो फील हो रहे हैं। मतलब आप वीडियो में देख सकते हो कि घर जो है वो ऑलमोस्ट पूरी तरह से हिल रहा है, और वहां पर वो बंदा भागने के बजाय, शेल्टर लेने के बजाय, अपने बार में जाता है, जो उसका बार है जो उसने घर में बनाया हुआ, और अपनी बोतलों को जप्पी डाल देता है। जी हाँ, जप्पी, मतलब वो जो जादू की जप्पी बोलते हैं ना, हम हक कर लेता है कि उनको कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब किसी इंसान को नहीं, किसी पेट को नहीं, बल्कि उसने अपनी अल्कोहल, लिकर की बॉटल्स को गले लगाया। इट वॉज लाइक ओके, यू नो वॉट, भूकंप आए, सुनामी आए, आई हैव माई प्रायोरिटीज, एंड पीपल आर लाइक वॉट इन द वर्ल्ड, पीपल आर थिंकिंग। जी हाँ, दैट्स वॉट पीपल आर थिंकिंग। नाउ आई ऑलवेज से कि लिकर, अल्कोहल और एनी सॉर्ट ऑफ यू नो इंटॉक्सिकेटिंग थिंग्स आर नॉट गुड फॉर यू। सो ऐसे में इन चीजों से दूर रहना चाहिए, ये हेल्थ को खराब करती हैं। अगेन आज भी यही कहना चाहूंगी, लेकिन ये वीडियो इतनी ज्यादा

बनिया, आई हैड टू टॉक अबाउट इट. लेकिन बंदा जो है मतलब भूकंप आ रहा है, मतलब वो वाली सिचुएशन है कि आग लगेगी बस्ती में हम तो रहेंगे मस्ती में, वो वाली सिचुएशन है कि भूकंप आ रहा है, ट्रेमर्स हो रहे हैं, जो होना है हो जाए, मेरी बॉटल जो है वो एकदम सही सलामत रहनी चाहिए, बाकी कहीं कुछ भी हो जाए हमको कोई लेना देना नहीं. मतलब मैं आई वॉज सरप्राइज बियॉन्ड लिमिट्स. या यू हर्ड मी राइट जी हाँ, मतलब किसी और की जान नहीं, अपनी जान नहीं, बल्कि अपनी बॉटल्स की जान बचाने में बंदा लगा हुआ है. क्या बात है, ये कलयुग में ही हो सकता है. आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, या आई एम टेलिंग यू. इसी के साथ यहाँ पर एक और जबरदस्त सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ अब वक्त हो गया है बर्थडे विश करने का, और ये बर्थडे विश हम करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिंगर्स वी हैव राइट नाउ. जी हाँ, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट कैलाश खेर जी. मतलब उनकी बुलंद आवाज, उनके गाने का स्टाइल, अगर वो गाएंगे ना तो आपके दिल तक आवाज और बात जरूर पहुंचेगी. मतलब ऐसे सिंगर्स बहुत ज्यादा है नहीं हमारे पास, मतलब क्या गाते हैं. कैलाश खेर इज वन ऑफ द बेस्ट बेस्ट सिंगर्स वी हैव, लाइक लिटरली देयर इज नो डाउट अबाउट इट. सो सबसे पहले कैलाश जी, आपको हमारी तरफ से, रेडियो ब्रिस्वानी की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद जन्मदिन की. हम यही कहेंगे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे, आप हेल्दी रहें, हैप्पी रहें, मुस्कुराते रहें और साथ में गाते भी रहें, क्योंकि आपके गाने से हमारे दिल को बहुत सुकून पहुंचता है एंड वी लव यू. सो थैंक यू सो मच ओवर द ईयर्स ये प्यारे प्यारे गाने हमें देने के लिए. और क्योंकि कैलाश जी का जन्मदिन है, सो ऑफकोर्स उनका एक गाना जो कि हर एक शादी में बजना शुरू हो गया था ब्राइडल एंट्री में, क्यों? वेल, आप खुद ही सुन लीजिए, फिर शायद आपको पता चल जाएगा.

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
2: ਵੈਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਵ ਖਰੋੜ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
3: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
2: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नू तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
4: हनी, ये तुम कहां ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
5: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
4: ऐसा क्या खास है वहाँ?
5: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
4: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
5: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
6: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपरवर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेंबर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।
7: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया की तरफ, क्योंकि वक्त हो गया है थोड़ा रियलिटी चेक का। मतलब मजे तो हम कर रहे हैं, गपशप भी चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रियल चीजें दुनिया में क्या चल रही है, थोड़ी सी हैवी चीजें। लेट्स जस्ट टॉक अबाउट देम। आई नो दे आर नॉट हैप्पी थिंग्स, बट ठीक है, बात करना जरूरी है रियलिटी के बारे में भी। सबसे पहले भारत की खबरों से शुरुआत करेंगे, और मुंबई में भारी बारिश हो रही है। जी हाँ, सिर्फ मुंबई नहीं बल्कि महाराष्ट्र के और भी बहुत सारी स्टेट्स में, बहुत सारी सिटीज में भारी बारिश हो रही है, और उसका कहर जो है अब लोगों तक पहुंच गया है, इनफैक्ट जाने जा रही है लोगों की। मुंबई में भारी बारिश का कहर, स्कूल कॉलेज बंद, पुणे में भूस्खलन से 4 लोगों की मौत। जी हाँ, महाराष्ट्र में बारिश का कहर जारी है। मुंबई में मंगलवार सुबह लोगों की नींद घने बादलों और तेज हवाओं के बीच खुली। मौसम विभाग ने शहर के लिए भारी बारिश और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एहतियात के तौर पर मुंबई के सभी सरकारी, निजी और नगर निगम संचालित स्कूलों और कॉलेजों में मंगलवार को छुट्टी घोषित कर दी गई है। सोमवार को लगातार हुई बारिश से मुंबई और आसपास के जिलों में जनजीवन लगभग ठप हो गया है। कई सड़कें पानी में डूब गई, पेड़ उखड़ गए और दीवारों तथा होर्डिंग गिरने की घटनाएं सामने आई। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि लोग बेहद खराब मौसम के लिए तैयार रहें। ऐसी स्थिति में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो सकता है, यातायात बाधित हो सकता है और बिजली सप्लाई भी ठप हो सकती है। 4 रंगों वाली चेतावनी प्रणाली में ऑरेंज अलर्ट तीसरे स्तर का होता है। ये येलो अलर्ट से ऊपर और रेड अलर्ट से नीचे होता है। समाचार एजेंसी PTI के मुताबिक इस बीच मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे बाईपास और मुंबई की ओर जाने वाला मार्ग सोमवार रात करीब 18 घंटे बंद रहने के बाद फिर से खोल दिया गया। भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन की वजह से ये मार्ग बंद करना पड़ा। पुणे जिले में भारी बारिश से जुड़े अलग अलग हादसों में 4 लोगों की मौत भी हो गई है।

0: जी हाँ दोस्तों, वही खबरों की बात हो रही है और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को मिला इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान। मैं हमेशा कहती हूँ कि मिस्टर मोदी ऐसे सर्वोच्च सम्मान जो है वो इकट्ठे कर रहे हैं जैसे लोग पिकाचू बॉल और पोकेमॉन बॉल्स जो हैं वो इकट्ठा कर रहे होते हैं ना। लाइक लिटरली इमेजिन 30 से ज्यादा देशों के सर्वोच्च सम्मान है इनके पास। आई कांट इवन इमेजिन दैट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान विंतांग आदि पूर्णा से सम्मानित किया है। भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी है। इस पोस्ट में लिखा गया कि आज सुबह मुझे बहुत स्नेह के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान भी दिया गया है। यह सम्मान कोटि-कोटि भारतवासियों का है और इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है। भारत और इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और आत्मीय संबंधों का है। मैं प्रेसिडेंट प्रबोवो जी, इंडोनेशिया की सरकार और यहां की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इससे पहले नरेंद्र मोदी मंगलवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबिनातो के साथ बातचीत के लिए पहुंचे। उनका भव्य औपचारिक स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी सोमवार को अपनी तीन देशों की यात्रा के पहले चरण में इंडोनेशिया पहुंचे थे। भारत सरकार के मुताबिक इस दौरे का मकसद भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी महासागर विजन और मजबूत करना और स्वतंत्र खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना भी है।
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात। भूल के गोले वो बम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी सा

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ खबरों की बात हो रही है। माइक्रोसॉफ्ट करेगा 4800 कर्मचारियों की छंटनी। जी हाँ, एक्सबॉक्स पर सबसे ज्यादा असर। जी हाँ, दिग्गज आईटी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने 4800 यानी कि 4800 कर्मचारियों की छंटनी करने का ऐलान किया है। ये उसके कुल कर्मचारियों का करीब 2.1% है। इस छंटनी की सबसे बड़ी मार कंपनी के एक्सबॉक्स डिविजन पर पड़ेगी। माइक्रोसॉफ्ट की एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एमी कोलमैन ने कर्मचारियों को भेजे गए एक संदेश में कहा कि तेजी से बदलती आईटी इंडस्ट्री में कंपनी को उन एरिया पर फोकस करना होगा जहां वो ग्राहक के लिए ज्यादा फायदा दिला सके। इस रीस्ट्रक्चरिंग के तहत एक्सबॉक्स में तुरंत 1600 से अधिक नौकरियां खत्म हो जाएंगी। हाल ही में एक्सबॉक्स की सीईओ बनी आशा शर्मा ने कर्मचारियों को भेजे गए संदेश में कहा कि कंपनी एक्सबॉक्स के इतिहास के सबसे बड़े रीस्ट्रक्चरिंग की शुरुआत कर रही है। उन्होंने बताया कि आने वाले एक साल में 1600 से और नौकरियां समाप्त की जाएंगी। इसके अलावा एक्सबॉक्स के 4 गेम डेवलपमेंट स्टूडियो कंपल्शन गेम्स, डबल फाइन प्रोडक्शन, निंजा थ्योरी और अंडेड लैब्स को भी कंपनी रीस्ट्रक्चरिंग के तहत अलग अलग किया जाएगा। आशा शर्मा ने कहा कि ये बदलाव एक्सबॉक्स के छोटे होने के लिए नहीं बल्कि उसके और बड़े भविष्य के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, इतिहास ऐसे कई उदाहरणों से भरा हुआ है जहां कंपनियों ने ये मान लिया है कि लंबे समय तक बने रहना ही उनके भविष्य की गारंटी है। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ फीफा वर्ल्ड कप का अब जरा ध्यान कर लेते हैं, फीफा वर्ल्ड कप की जरा बात कर लेते हैं। बेल्जियम के खिलाफ अमेरिका की बुरी हार। जी हाँ, तो सबसे पहले तो मुझे एक बात से बहुत अच्छा लग रहा है कि मतलब लिटरली चीटिंग करी है, करप्शन करा है डोनाल्ड ट्रंप ने उस एक प्लेयर को वापस से मैच में लाने के लिए जिसको रेड कार्ड मिल गया था ऑलरेडी, और ऊपर से रेफरी जिसने की रेड कार्ड दिया था उस पर सारे के सारे इल्जाम लगाए गए। वेल, वी आर गोना टॉक अबाउट दैट, पर पहले जरा बात करते हैं कि हुआ क्या है। सो फीफा वर्ल्ड कप के प्री क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम ने अमेरिका को हराकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया है, व्हिच आई एम क्वाइट हैप्पी अबाउट। बेल्जियम ने अमेरिका के खिलाफ 4 गोल दागे जबकि अमेरिका सिर्फ 1 गोल कर पाया। बेल्जियम के खिलाड़ी चार्ल्स डी कैटलारे के शुरुआती 2 गोल दागे और अमेरिकी रक्षा पंक्ति की बड़ी गलतियों का फायदा उठाकर बेल्जियम के खिलाड़ी हांस वानाकेन ने टीम के लिए 3रा गोल दागा। इसके बाद मैच के आखिरी पलों में रोमेलू लुकाकू ने बेल्जियम के लिए 4था गोल करके टीम की जीत पर मुहर लगा दी। जी हाँ, अमेरिका की ओर से पहले हाफ में मलिक टिलमैन ने एकमात्र गोल किया और अमेरिका के स्ट्राइकर फोलारिन बालोगुन को पिछले मुकाबले में दिखाए गए रेड कार्ड की वजह से यह मैच काफी चर्चा में था। जी हाँ, 25 साल के बालोगुन पिछले दौर में बोस्निया हर्जेगोविना के डिफेंडर तारिक मोहारमेविक पर फाउल करने के लिए सीधे रेड कार्ड दिखाए जाने के बाद बेल्जियम के खिलाफ अपनी टीम के अंतिम 16 मुकाबले से बाहर होने वाले थे, लेकिन फीफा ने एक चौंकाने वाला फैसला लिया और इस एक मैच में प्रतिबंध को 12 महीने के लिए निलंबित कर दिया। जी हाँ, मतलब हटा दिया। इसकी UEFA बेल्जियम और इंग्लैंड के फुटबॉल संघों ने आलोचना की। लिटरली मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि UEFA और बेल्जियम और इंग्लैंड के बहुत सारे लोगों ने, फुटबॉल संघों ने, कमेटीज ने इसके बारे में प्रोटेस्ट किया, लिटरली कहा कि ये चीज गलत है। तो ट्रंप पता है सामने से क्या कहते हैं आगे? ट्रंप कहते हैं कि यू नो व्हाट, आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, जो कि मुझे क्रिटिसिज्म जो है वो लेकर आए और यहां पर जो है वो एक नया जो है वो चीज कोई शुरू कर दे। बट मैं इतना कहना चाहूंगा कि उस रेफरी में प्रॉब्लम है जिसने कि हमारे प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखाने की कोशिश की। जी हाँ, वो रेफरी का पिछला रिकॉर्ड जो है वो उतना अच्छा नहीं है। आई डोंट वांट टू गो इनटू डिटेल्स, दैट्स व्हाट ही सेड। या दैट्स व्हाट ही सेड, क्योंकि बहुत सारे लोग उनके पीछे पड़ गए कि अच्छा मतलब तुम क्या कर रहे हो, और कोई फीफा को भी पूछे कि ट्रंप ने बोला और तुमने कर दिया, मतलब तुम फीफा नाम क्यों रखते हो, है अमेरिफा रख दो इसका नाम, क्योंकि फीफा तो बनना ही नहीं चाहिए ना, अमेरिफा रख दो इसका नाम, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहा है वो तुम मान रहे हो। तो यही वाली बात की वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पुष्टि की थी कि उन्होंने इस ही फीफा से कहा था कि इस रेड कार्ड को वापस लिया जाए। चलिए, रेड कार्ड को वापस तो ले लिया गया, लेकिन यहाँ पर मजेदार चीज ये हो गई कि टीम ही बाहर हो गई। अब वो बोल रहे हैं कि चलो ठीक है, अब मतलब ना रहेगी यू नो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, मतलब रेड कार्ड दिया था माना है नहीं, तो फिर ठीक है, बेल्जियम ने ही उसको बाहर का रास्ता दिखा दिया। बेल्जियम वॉज लाइक यू नो वॉट लेट मी डू द ऑनर कि हम अमेरिका को बाहर का रास्ता दिखाएं, एंड अमेरिका के प्लेयर्स गड़बड़ करते हैं, उनके प्रेसिडेंट उनसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं, और सबसे बड़ी गड़बड़ तो ये हुई है कि फीफा अमेरिका में आया कैसे, मतलब फीफा किसी और जगह पे होना चाहिए था, अमेरिका को मिला ही क्यों इसका टेंडर, आई डोंट अंडरस्टैंड। बट एक बात तो पक्की है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के पीछे बहुत सारे लोग पड़ गए थे कि अच्छा अब तुम ये भी करोगे, तुमको पीस प्राइज भी चाहिए, तुमको फीफा वर्ल्ड कप भी चाहिए, है ना, तुमको सारी चीजें चाहिए, तुम सब कुछ ही क्यों नहीं ले लेते। या दैट्स व्हाट पीपल आर सेइंग। बट ये तो पक्की बात है कि जैसे ट्रंप को ग्रीनलैंड नहीं मिला ना, वैसे फीफा भी नहीं मिला। जी हाँ, यहाँ पर इसी के साथ इसी अच्छे अच्छे नोट पे एक और गाना मैं आपको सुनाने वाली हूँ, और फिर मैं आपको ऑफ कोर्स एक और जबरदस्त सी बात बताने वाली हूँ।

आता है, ना रात को सोया जाता है। उलझा रहता हूँ यादों में, मुझको बड़ा रोना आता है। भूल गया मैं खाना पीना, जिंदगी को हंस के जीना, तेरे चक्कर में मेरा एक बोतल रोज का पीना।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
2: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेंस शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन daily from 9 a.m. Telephone Rani Creations on 3391-0622 or visit their webpage ranicreations.com. The one-stop Bollywood fashion and entertainment store, well known for its quality service and reasonable prices.
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
4: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane. LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
5: जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हो रेडियो ब्रिस्बानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि जब भी मैं इंटरनेट पर कुछ ऐसा किस्सा पढ़ती हूँ जहां पर AI ने गड़बड़ कर दी, रॉबर्ट्स ने गड़बड़ कर दी, और मुझे बड़ा मजा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, वी डिजर्व दैट। वाई? क्योंकि हमने ये पंगे लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमको लेने थे, हमको चुल होती है, हमको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसे किया तो क्या होगा, अच्छा अगर नंगी तार को हाथ लगाया तो झटका तो लगेगा। लेकिन हमको फिर भी होता है क्यूरियोसिटी की ओके लगा के होगा क्या, अरे झटका लगेगा और क्या?

होगा एंड दैट इज व्हाट्स हैपनिंग हियर. जी हाँ, सो एक रॉबर्ट मैलफंक्शन कर गया अपने एक वर्क प्लेस पे और वहां पर उसने एकदम से कुंफू करना शुरू कर दिया. मतलब जिस काम के लिए उसको रखा था उस काम को भूल के उसने कुंफू करना शुरू कर दिया. वहां जो आजू बाजू लोग थे उनको मारना शुरू कर दिया और लिटरली कुंफू के थ्रू उन्होंने मारना शुरू कर दिया. ऐसे ही कुछ नहीं, मतलब किक्स मारी, मतलब वो पूरा जो कुंफू की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो करना जो है उसने शुरू कर दी. लोग जो है उसको देख कर भागने लगे और जब भी उसके पास कोई आता उसको बंद करने की कोशिश करता वो और डबल तरीके से कुंफू करता. एंड आई वाज लाइक कि बट हम ही ने तो इन्हें इनवाइट किया, राइट? दिस इज व्हाट वी हैव मेड. नाउ इट्स लिटरली किकिंग आवर एस, इट्स लिटरली लिटरली. सो ऐसे में मुझे ऐसा लग रहा था कि एक रूटीन डे जो कि वर्क प्लेस में है वो एक अनएक्सपेक्टेड टर्न कैसे ले सकता है अगर आप भी रॉबर्ट्स को इनवाइट करते हो. जी हाँ, सो अगेन, जैसे कि अगर ये वीडियो आपने देखी है तो आपको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन इन केस आपने नहीं देखी है जरूर चेकआउट कीजिए. जी हाँ, और ये इनका इमरजेंसी शटडाउन सिस्टम जो होता है ना वो भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, लेकिन उसके लिए आपको इनके करीब जाना पड़ता है और फिर उसके बाद आप उनको बंद कर सकते हो. आप ऐसे भी बंद कर सकते हो, बट देयर आर मेनी रॉबर्ट्स जिनका जो ये सिस्टम होता है वो उनके अंडर ही होता है या उनके ऊपर ही होता है. सो आपको करीब जाकर उसे ऑफ करना होता है. लेकिन आप ऑफ करोगे कैसे अगर आपका रॉबोट आपके साथ कुनफू कराटे करने की कोशिश कर रहा होगा? आप वहां से भागोगे? आप बोलोगे अरे मतलब भला गई, हमको कुछ नहीं लेना देना यहाँ पे, इसको जो करना है करने दो, मैं तो भाग रहा हूँ. लेकिन आप अपने चक्कर में चार और लोगों के लिए जो मुसीबत लेकर आए हो उसका क्या? सो मैं अभी भी कहूंगी टू ऑल द कंपनीज, जितने भी वर्क प्लेसेस हैं, यू नो कंपनीज हैं जो एआई के चक्कर में पड़ रही है, जो रॉबोट्स के चक्कर में पड़ रही हो, देखो भाई इस दुनिया में इंसानों से अच्छा बंधुआ मजदूर कोई नहीं हो सकता. आपका रॉबोट जो है वो भी आपकी बात जो है वो मानने से इनकार कर सकता है. और अगर आप फिर भी उससे काम कराने की कोशिश करोगे, कुछ करने के लिए बोलोगे, तो ऐसा भी हो सकता है वो कुनफू कराटे करने शुरू कर दे. बट अ ह्यूमन वुड नेवर डू दैट टू यू. सो मैं कहती हूँ कि अभी भी एआई और रोबोट से दूरी बनाने का जो है वो वक्त है, बना लीजिए. क्योंकि पता चला आपके साथ कुनफू कराटे होके आप एकदम मम्मी की तरह घूम रहे हो पट्टियां बांध के, ऐसा नहीं होना चाहिए. सो टू ऑल द कंपनीज, बड़ी बड़ी टेक कंपनीज और जो भी रॉबोट्स को हायर करने की सोच रही है, जरा इस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा. यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

0: गलती कर।
1: जी हाँ दोस्तों, आजकल एक जोक बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। जी हाँ, और वो जोक है आमिर खान और उनकी तीसरी शादी के बारे में। सो इंटरनेट अगर आप खोलोगे तो आपको कोई ना कोई एक कुंवारा बंदा ऐसा करते हुए जरूर, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी वो कर रहा होगा और वहां पे लिखा होगा, लगता है हमारे हिस्से की शादी भी आमिर खान ने कर ली। जी हाँ। चलिए, यहाँ पर ये जोक तो बहुत ज्यादा आगे हो रहा है और बहुत सारे लोग इस पे हंस रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मिलेनियल्स जो है वो इस वक्त कुंवारे बैठे हैं। बहुत सारे लोग ये चाहते वो शादी करना ही नहीं चाहते, कुछ लोग जो है वो मजबूरी में शादी कर ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जैसा मन चाहा पार्टनर वो चाह रहे हैं उनको मिल ही नहीं रहा है। सो ऐसे में शादी नहीं हो रही है, और ऐसे में आजकल की जनरेशन ऐसी भी है कि आप उनको प्रेशर नहीं कर सकते कि किसी के साथ भी शादी करा दो। तो मिलेनियल्स जो है एक ऐसी जनता बन गई है, खासकर 91 से लेके 95 और 96 से 97 तक, ये वाली जनता तो ऐसे है कि इनमें इतने कुंवारे लोग आपको मिलने वाले हैं, फिर चाहे वो लड़के हो चाहे लड़कियां हो, सब ऑलमोस्ट सब अनमैरिड है। सो ऐसे में अब उन्होंने ये जोक बनाना शुरू कर दिया है कि हम इसलिए अनमैरिड है क्योंकि आमिर खान हमारे हिस्से की शादियां करते रह रहे हैं, हमारी गलती नहीं है। अब आमिर खान ने तीसरी शादी कर ली, बताओ हमारे हिस्से की सारी शादियां तो आमिर खान कर गए। चलिए, यहाँ पर आमिर खान और उनकी वाइफ गौरी ने शादी की है इसी वीकेंड संडे को, और अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द लवली कपल। हम यही कहेंगे कि आपका प्यार जो है वो बना रहे और साथ जो है वो भी बना रहे, क्योंकि वी आर हैप्पी फॉर यू मिस्टर परफेक्शनिस्ट। इसी के साथ अब चलते हैं सीधा अपने फेवरेट सेगमेंट ओल्ड इज गोल्ड की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना, ओल्ड इज गोल्ड शुरू होने वाला है, मतलब पुराने गाने, पुरानी बातें, पुराने किस्से, वो ख्याल, वो सब कुछ जो है हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सबसे पहले जो शुरुआत होगी एक बहुत ही खूबसूरत गाने के साथ होगी, उसका नाम है तू मेरी जिंदगी है। एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बॉलीवुड वाला वर्जन, आई एम टॉकिंग ऑन द ओरिजिनल ओरिजिनल द ओजी वर्जन। सुनते हैं इसको, करते हैं ओल्ड इज गोल्ड की शुरुआत, और आ जाइए आप अपनी फरमाइशों के साथ, क्योंकि गाने अगर पुराने आप फरमाइश करना चाहते हो, दिस इज द परफेक्ट परफेक्ट टाइम।

आई थिंक इस गाने को जितनी बार सुना जाएगा उतनी बार कम ही फील होगा. मतलब ये गाना इतना खूबसूरत, इतना लेजेंडरी है कि मेरे पास शब्द भी कम पड़ जाएंगे. अब अगर आपने इसका एक वर्जन बॉलीवुड की किसी मूवी में सुना है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया वो ओरिजिनल वर्जन नहीं है, ये है ओरिजिनल वर्जन तवस्सुफ खानम की आवाज में. क्या गाती थी, मतलब बाकमाल. जी हाँ, चलिए दोस्तों इसी के साथ अब आपको बताते हैं कि जब बहुत सारे होस्ट ने डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर डिफरेंट डिफरेंट इवेंट्स में इंटरव्यूज में पूछा अभिनेत्रियों से, उस एरा की अभिनेत्रियों से, कि आपके जमाने में कौन सा वो एक्टर था जिसके लिए लड़कियां सेट पर पहुंच जाया करती थी और बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग उनकी होती थी और वो उनको देखने के लिए सेट के बाहर ही रहती थी हमेशा. तो गेस कीजिए, फिर चाहे वो मौसमी चटर्जी हो, फिर चाहे वो हेमा मालिनी हो, फिर चाहे वो मुमताज हो, सबने एक ही नाम लिया. उन्होंने कहा राजेश खन्ना. सबसे पहली बात तो उन्होंने ये कही कि हमने इससे ज्यादा फैन फॉलोइंग, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल फैन फॉलोइंग, किसी की नहीं देखी. मतलब इनके लिए लड़कियां सेट के बाहर आ जाती थी, मतलब तस्वीरों के लिए वो होती थी कि हमें तस्वीर खिंचानी है, हमें ऑटोग्राफ चाहिए. जी हाँ, और वहीं फरीदा जमाल जी कहती है कि बहुत सारी अभिनेत्रियां तो देख के मतलब दंग रह जाती थी, क्योंकि जो लेडीज आती थी, जो औरतें आती थी, जो लड़कियां आती थी वहां पर राजेश खन्ना को देखकर, वो कहती थी कि यू नो व्हाट, हमारे जिस्म के इस हिस्से पर साइन कर दो, हमारी बाजू पे साइन कर दो, हमारे गले पे साइन कर दो, हमारे माथे पे साइन कर दो. जी हाँ, और तब राजेश खन्ना उनको देख के कहते थे, देखा बात देखी हमारी. जी हाँ. सो राजेश खन्ना की जो फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी. शायद मैंने आपको ये बात बताई है कि उनकी सफेद गाड़ी उनके ड्राइवर रोज धोया करते थे. आप लोग बोलोगे कि इसमें क्या अलग बात है, ड्राइवर अगर रोज गाड़ी धो रहा है तो ये तो अच्छी बात है. साफ गाड़ी ले जाना हर एक स्टार की, मतलब इट्स अ रिक्वायरमेंट, राइट? सो इसलिए नहीं क्योंकि आज जो गाड़ी है वो गंदी हो जाती थी, मैली हो जाती थी, इसलिए क्योंकि वो गाड़ी गुलाबी हो जाती थी, लाल हो जाती थी, क्योंकि जितनी भी लेडीज उनकी शूटिंग चल रही होती थी उनसे तो मिल नहीं पाती थी, उनकी गाड़ी के पास ही वो वहां पर रुक जाया करती थी, उनकी गाड़ी को ही किस कर दिया करती थी, चुम्मे दे दिया करती थी. क्यों? क्योंकि राजेश खन्ना के साथ तो ये करना मुश्किल है और राजेश खन्ना हर किसी को मिलते भी नहीं थे. सो ऐसे में उन्होंने उनकी गाड़ी को ही पुचकारना शुरू कर दिया. इमेजिन कीजिए राजेश खन्ना की फैन फॉलोइंग ऐसी थी. आई मीन फैन फॉलोइंग तो उनकी हर जगह पे थी, हर एज ग्रुप में थी, हर तबके में थी, लेकिन फीमेल फैन फॉलोइंग, इट वॉज क्रेजी. इसीलिए उनके ड्राइवर को रोज ही गाड़ी धोनी पड़ जाती थी. जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से.

जी दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपको मैं एक और चीज बताती हूँ, एक बहुत ही दिलचस्प चीज जो कि ऋषि कपूर ने कही थी और एक प्रोग्राम के दौरान, एक अवार्ड शो के दौरान उन्हें अवार्ड मिलता है और वहां पर उनके साथ रमेश सिप्पी, कमल हासन भी होते हैं स्टेज पर ही, और अपनी स्पीच में, जी हाँ, थैंक यू स्पीच में वो एक जिक्र करते हैं किस्से का। जी हाँ, वो बताते हैं कि सागर पिक्चर की शूटिंग चल रही थी। जी हाँ, सागर पिक्चर की शूटिंग चल रही थी और वहां पर रमेश साहब कहते हैं कि शॉट रेडी हो गया है। एक असिस्टेंट डायरेक्टर से वो कहते हैं कि शॉट रेडी हो गया है, जाके कमल जी को कहो कि शॉट लग गया और जाके चिंटू को भी कहो कि शॉट लग गया है। कहते मैं सोच रहा था कि मैंने क्या किया यार, मेरे को इज्जत क्यों नहीं मिल रही है। मतलब माना कि कमल जो है वो 2 साल की उम्र से पिक्चरें कर रहा है, पर मैं भी तो 4 साल की उम्र से पिक्चरें कर रहा हूँ। मैं कमल से उम्र में बड़ा हूँ, लेकिन ऐसे में कमल हासन को कमल जी कहा और मुझे चिंटू कह दिया, मुझे जी क्यों नहीं कहा। जी हाँ, तो साथ में फिर वो कहते हैं कि उसी दिन मैंने सोच लिया कि जिस दिन मेरे बच्चे होंगे ना, मैं उनका निकनेम रखूंगा ही नहीं, मैं बिल्कुल उनका निकनेम नहीं रखूंगा, क्योंकि फिर इज्जत ही नहीं मिलती। जी हाँ, और वहीं पर कमल हासन और रमेश सिप्पी भी खड़े होते, वो दोनों ही हंस हंस के बेचारे गिरने वाली हालत में पहुंच जाते हैं। देवर लाइक ओनली ऋषि कपूर कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दैट। जी हाँ, ऋषि कपूर हमेशा से फेमस रहे, मतलब जो उनके दिल में आता है ना, अगर उनको गड़बड़ लग रही है वो बोल देंगे, एंड आई लव दैट कैरेक्टर। या वी मिस यू ऋषि साहब। यहाँ पर एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

दो हर नजर से हाँ, सबको ये बता दो, कह दो हर नजर से हाँ, कोई भी मेरे सिवा गुजरे ना इधर से हाँ।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉर्ग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270 35। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270 35, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन में। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। ब्रिस्बेन एयरपोर्ट पर शुरू हुआ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल। जी हां, ब्रिस्बेन एयरपोर्ट से आज एक बड़ी और पर्यावरण के अनुकूल खबर आई है। एयरपोर्ट पर अब विमानों के लिए सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी इको फ्रेंडली ईंधन की सप्लाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए विवा एनर्जी ने अपने पिंकेनबा टर्मिनल पर एक विशेष स्टोरेज टैंक को फिर से तैयार किया है। वहीं ब्रिस्बेन के सीबीडी में लॉन्च हुआ शानदार डिजिटल द ज्वेल स्क्रीन। जी हां, ब्रिस्बेन के बिजनेस और लग्जरी रिटेल इलाके 240 क्वीन स्ट्रीट में आज QMS कंपनी ने द ज्वेल नाम का एक बेहद आधुनिक और बड़ा डिजिटल स्क्रीन लॉन्च किया है। ये स्क्रीन पूरी तरह मोशन और 3D टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं ब्रिस्बेन की कंपनी GMG ने शुरू किया एडवांस ग्राफीन प्लांट। ब्रिस्बेन की ग्राफीन मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप GMG ने रिचलैंड्स में मौजूद अपनी फैसिलिटी में नई जनरेशन 2.0 ग्राफीन प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी प्लांट को लाइव यानी चालू कर दिया है। ये प्लांट पूरी तरह से एडवांस प्लाज्मा प्रोसेस पर काम करता है और इसके पूरी तरह सेट होने के बाद हर साल 10 टन हाई क्वालिटी ग्राफीन का उत्पादन हो सकेगा। वहीं ब्रिस्बेन वेदर की बात करें तो खिली धूप के साथ सुहाना मौसम। जी हां, अगर आज के मौसम की बात करें तो ब्रिस्बेन का मौसम आज काफी सुहाना और साफ बना हुआ था। थोड़े से बादल जरूर थे बट वैसे साफ था। आज दिन का अधिकतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। इसके साथ नेडोक वीक के रंग में रंगा ब्रिस्बेन पुलों पर होगी खूबसूरत लाइटिंग। जी हां, ब्रिस्बेन में इस हफ्ते नेडोक वीक मनाया जा रहा है जिसकी इस साल की थीम है 50 ईयर्स ऑफ डेडली। जी हां, इस मौके पर संस्कृति और इतिहास को सम्मान देने के लिए आज ब्रिस्बेन के मशहूर कंगारू पॉइंट ब्रिज को काले, लाल, पीले और नीले और हरे रंगों की खूबसूरत लाइटों में रोशन किया जाएगा। वहीं ब्रिस्बेन ब्रोंकस टीम में बड़े बदलावों की तैयारी। रग्बी लीग से खबर है कि ब्रिस्बेन ब्रोंकस टीम के कोच माइकल मैग्वेरे इस समय बड़े और कड़े फैसले लेने के मूड में हैं। टीम का इस सीजन का परफॉर्मेंस उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है और इसके बाद ये फैसले लिए जाएंगे। इसी के साथ अब जरा चलते हैं भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले मुंबई में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट, स्कूल और कॉलेज बंद। जी हां, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में मॉनसून का कहर जारी है। मौसम विभाग ने आज यानी 7 जुलाई को मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है जिसके बाद प्रशासन ने एहतियात के तौर पर आज सभी स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का फैसला किया। वहीं दिल्ली में जुलाई की सबसे गर्म सुबह। जी हां, एक तरफ जहां देश के कई हिस्सों में बारिश हो रही है वहीं देश की राजधानी दिल्ली में आज उमस और गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। दिल्ली में आज सुबह का न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो इस मौसम के सामान्य तापमान से 2 डिग्री ज्यादा है। वहीं जम्मू कश्मीर के डोडा में अचानक आई बाढ़। जी हां, जम्मू कश्मीर के डोडा जिले से एक बड़ी खबर आ रही है जहां थाथरी कस्बे के ऊपरी इलाकों में भारी बारिश के बाद अचानक भीषण आग बाढ़ आ गई। इस बाढ़ की वजह से कई घरों, दुकानों और सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा है। वहीं पीएम मोदी का जकार्ता में स्वागत, इंडोनेशिया के साथ बड़ी मिसाइल डील। जी हां, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय इंडोनेशिया के आधिकारिक दौरे पर हैं। आज जकार्ता पहुंचने पर उनका शानदार और औपचारिक स्वागत किया गया। इस दौरे की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत और इंडोनेशिया ने रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक समझौते पर साइन किया है। दोनों देशों के बीच ब्रह्मोस और अस्त्र मिसाइलें सिस्टम को लेकर बड़ी डील फाइनल हुई है। वहीं व्हाट्सएप को मिला समय, भारत में यूजर नेम फीचर पर अभी रोक। जी हां, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के विवादित यूजर नेम फीचर को लेकर केंद्र सरकार ने कंपनी को नोटिस का जवाब देने के लिए 3 दिन का और समय दिया है। व्हाट्सएप ने सरकार को भरोसा दिलाया है कि जब तक इस फीचर के प्राइवेसी से जुड़े मुद्दों पर सरकार के साथ पूरी बातचीत खत्म नहीं हो जाती तब तक इसे भारत में रोल आउट नहीं करेंगे। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी का इस्तीफा मंजूर। अयोध्या से आ रही एक बड़ी प्रशासनिक खबर के मुताबिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अपने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। इसके साथ अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले फीफा वर्ल्ड कप 2026 आज रात राउंड ऑफ 16 के दो बड़े मुकाबले। जी हां, दुनिया भर के फुटबॉल फैंस की नजरें अब रात में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप के दो सबसे रोमांचक मैचों पर टिकी है। आज रात राउंड ऑफ 16 के आखिरी दो मैचों में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना का सामना इजिप्ट से होगा। इसके साथ अलनीनो के कारण भारत के पावर सिस्टम पर खतरा। जी हां, एक ग्लोबल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन CREA की ताजा रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि इस साल उभर रहे अलनीनो मौसम पैटर्न्स का सबसे बुरा असर भारत के बिजली सिस्टम पर पड़ सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक कमजोर हवाओं और कम बारिश के कारण भारत में विंड और हाइड्रो से बनने वाली बिजली का प्रोडक्शन कम होगा, जबकि गर्मी बढ़ने से एसी की डिमांड बढ़ेगी। वहीं अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको वर्ल्ड कप के तीनों को होस्ट टूर्नामेंट से बाहर। जी हां, फुटबॉल जगत से एक और बड़ी खबर है कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी कर रहे तीनों देश अब टूर्नामेंट से पूरी तरह बाहर हो चुके हैं। कनाडा और मेक्सिको के पहले ही बाहर होने के बाद कल रात खेले गए राउंड ऑफ 16 के मैच में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से करारी शिकस्त देकर उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखा दिया है। वहीं डिजिटल प्राइवेसी पर यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला। जी हां, ईयू ने आज टेक कंपनियों के खिलाफ डिजिटल डेटा प्राइवेसी को लेकर नए और कड़े नियम लागू कर दिए हैं। अब कोई भी बड़ी सोशल मीडिया कंपनी यूजर्स की बिना स्पष्ट सहमति के उनके पर्सनल डेटा को ट्रैक नहीं कर पाएगी। वहीं ग्लोबल एविएशन इंडस्ट्री में ग्रीन फ्यूल पर बढ़ा फोकस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विमानों से होने वाले कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए आज कई देशों ने मिलकर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल यानी कि SAF के इस्तेमाल को अनिवार्य करने की दिशा में एक नया समझौता किया है। वहीं स्पेस स्टेशन से दुनिया देख रही है फीफा वर्ल्ड कप का रोमांच। जी हां, नासा ने अंतरिक्ष से एक खूबसूरत तस्वीर और वीडियो शेयर किया है जिसमें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष से पृथ्वी के चक्कर काटते हुए लाइव फीफा वर्ल्ड कप मैच का आनंद लेते दिख रहे हैं। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो का वर्ल्ड कप सपना टूटा स्पेन क्वार्टर फाइनल में। बीती रात टेक्सास में खेले गए एक बेहद रोमांचक नॉकआउट मैच में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ पुर्तगाल के सुपरस्टार खिलाड़ी रोनाल्डो का सपना भी टूट गया, क्योंकि ये उनका लास्ट फीफा था यानी कि अंतिम फीफा था। इसी के साथ बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से रौंदा। डी कैट्रेल के दो शानदार गोल। फीफा वर्ल्ड कप के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने शानदार खेल दिखाते हुए मेजबान अमेरिका को 4-1 से हरा दिया। बेल्जियम की तरफ से चार्ल्स डी कैटलर ने मैच के पहले हाफ में दो बेहतरीन गोल किए जिसने अमेरिकी टीम को बैकफुट पर धकेल दिया। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने फीजी में स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए दिए $35 मिलियन। ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीसी ने फीजी के साथ एक नए समझौते के तहत वहां स्पोर्ट्स खासकर रग्बी यूनियन के विकास के लिए $35 मिलियन की भारी रकम मदद की घोषणा की है। इसी के साथ विंबलडन 2026 दिग्गजों के बीच बड़ा मुकाबला जारी। लंदन के ग्रास कोर्ट पर चल रहे विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में आज कई बड़े उलटफेर देखने को मिले। मेंस और विमेंस सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। वहीं क्रिकेट विक्टोरिया ने अंडर 17 टीम का ऐलान। जी हां, क्रिकेट जगत से युवा प्रतिभाओं के लिए एक अच्छी खबर है। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट विक्टोरिया बोर्ड ने साल 2026 और 27 के घरेलू सीजन के लिए अपनी अंडर 17 मेल स्क्वाड की घोषणा कर दी है। इसके साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल, तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: रेडियो ब्रिस्बानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मतिंतार नैनी फिजी के स्वर्गीय पंडित रामजग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रॉय सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रोक सूचना समाप्त हुआ।
2: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
3: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडीज, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा। ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: तो क्या तू फिर भी जान है मेरी।
1: This is Amitabh Bachchan.
2: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
3: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
4: Hi, this is Salman Khan.
5: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
6: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
8: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से।
9: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
10: Hi, this is Ajay Devgan, और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहां कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
3: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मतिंतार नैनी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रॉय सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रोक सूचना समाप्त हुआ।
4: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

ना बदला में।

0: 보관.
1: यूएस के इलेक्शन के बाद जब डोनाल्ड ट्रंप

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
4: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
5: अरशाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
4: अरे वाह, इनका पता बताना।
5: अरशाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। Call Arshad from Arshad Lawyers now on 0420-933-171. Website www.arshadlawyers.com. We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: ओए राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट वीरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रिकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Veere. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
2: Some numbers carry weight beyond what you see. Q11700, the master number of Vedic tradition, a heritage Queensland plate. First issued in 1922, a piece of Queensland history with full provenance, owned outright, transfer ready. For the buyer who understands that the number you carry is a statement of who you are, Q Plate Sales. Inquire at qplatesales.com.au. It's not just a number, it's a statement.

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चहेते रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.9 एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसी बने होए हो। देखो, हजारां दी भीड़ दे विच ना कोलकाता स्टेडियम विच फिल्म दा एक गाना फिल्माया जांदा हैगा। सारियां तैयारियां हो चुकियां सी, इस विचकार हीरोइन रोन लगती है, तां फिर की हुंदा है? इस तों बाद दी तां पूरी गल है जो तुहानूं दसणी है। देखो, सुपरस्टार अमिताभ नूं तो देखिया नहीं गया, तो कोले जाके इसकी वजह पूछी। वजह जान के प्रोड्यूसर नु बुलाया ते हीरोइन नु उसे समय मुंबई भेजण दा अरेंजमेंट करन नु कहा। जी हाँ, असीं गल कर रहे 1981 विच रिलीज हुई याराना फिल्म थी। एक एक्शन ड्रामा फिल्म सी जिसका निर्देशन राकेश कुमार ने किया। फिल्म विच अमिताभ बच्चन, अमजद खान, नीतू सिंह, तनुजा अते कादर खान लीड रोल दे विच सी। फिल्म दा प्लॉट महाभारत दे करण ते दुर्योधन दी दोस्ती वर्गा जा ही उस तरीके दे नाल दिखाया गया।

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 107.1 एम ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल तुसे बने हुए हो। देखो याराना फिल्म दी स्टोरी है गया जिहड़ी ओह ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने जद के स्क्रीन प्ले विजय कौल ने लिखा है। डायलॉग कादर खान दे सी, प्रोड्यूसर एम ए नाठिया नाठिया वाला सी, गीतकार अनजान, जद के संगीतकार राकेश राजेश रोशन सी। फिल्म दे कोल 7 गाने रखे गए सी। इन्हा गाणियां विच छूकर मेरे मन को, किया तूने क्या इशारा, सारा जमाना हसीनों का दीवाना, तेरे जैसा यार कहां कहां ऐसा यार आना, मतलब बहुत ज्यादा हिट होया सी। तीनों गाने सदाबहार है कि नहीं। इस फिल्म दे लई अमजद खान नु बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर दा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिलिया सी। छूकर मेरे मन को गाना रविंद्रनाथ टैगोर की एक कंपोजिशन तो लिया गया सीगा। इस बारे होर भी तुहानू दस्सदे आं, पर पहले गीत सुन लो।

0: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660.
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert. Performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: हां जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो ब्रसवानी 101 एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए। देखो 1 जुलाई 1977 विच ना फिल्म लॉन्च हुई सी। फिल्म दा शुरुआत विच टाइटल यार मेरा सी। इस विच का डायरेक्टर अमिताभ दे नाल मिस्टर नटवर लाल बना रहे सी। दो अते तीन वार मूव दो अते दो पंच मूवी भी कंप्लीट हो गई सी। ते इना फिल्मा दे निर्माता अमिताभ तो पहला ही डेट्स ले चुके सी। याराना मूवी विच अमिताभ दे ऑपोजिट नीतू सिंह नु कास्ट कीता गया सी। दोवां दी चंगी दोस्ती सी। अमिताभ दे कोल बहुत घट समय होण दे चलदे फिल्म नु पूरा होना भी लंबा समा लग रहा सी। इना लंबा समा लग्या कि नीतू सिंह दी ऋषि कपूर दे नाल एंगेजमेंट तक हो गई सी। इसे तो बाद दी पूरी कहानी हैगी है जिहड़ी मैं तुहानू एक एक करके दसदी आं, पर पहला हैगी सुन लो।
1: डायमंड

0: इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com, द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो प्रसवानी वन सन वन एम ते जी आर छे संदेश अलग दिनाल से बने हुए हो। खैर वेलकम तो मैं थोड़ा करता है गया, पर हुण वेला हो चुका है थोड़े तो टाटा बाय बाय कहण दा, थोड़े तो इजाजत लैण दा। यार उन्हां दी थोड़ी जी गल होर कर दिंदी हां मैं। अमिताभ ने ना सारा जमाना गाने विच एक खास तरह दे इलैक्ट्रिक ड्रैस पाई सी 1979 यानी कि 1979 विच अमेरिकन फिल्म द इलैक्ट्रिक हार्समैन विच रॉबर्ट रेडफोर्ड ने इलैक्ट्रिक ड्रैस पानी पाई सी ना, उसे तरह थी। उधर ए आइडिया प्रोड्यूसर दे मन विच आया, लाइट नू ऑन ऑफ करन दा बटन अमिताभ दे हाथ विच सीगा। 2.25 दे बजट विच बनी इस फिल्म ने 3.5 करोड़ दा बिजनेस कीता सी। एक सुपर हिट फिल्म साबित हुई सी। ते यही कहानी सी कि इस फिल्म दे विच जिहड़ा गाने दे विच नीतू सिंह नजर नहीं आई बात दे विच, है ना। कहानी बहुत काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बाकी तुसी अपनी कहानियां जरूर दस रहा करो, साथ नाल जुड़ते रहा करो। रेडियो ब्रिसवानी वन सन वन एम साथ फेसबुक पेज है जी, तो ब्रिसवानी@ब्रिसवानी.com साथ ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाना है अपना साथ गलबात जरूर करते रहा करो। बाकी कल करते मुलाकात, रखो अपना ख्याल, सत श्री अकाल।

0: डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मतिंतार नैनी फिजी के स्वर्गीय पंडित रामजग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। स्ट्रोक वेक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रॉय सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ स्ट्रोक सूचना समाप्त हुआ।
2: नवी क्वींसलैंड सरकार 4000 हेक्टेयर तो भी वध जमीन रिहायश लई उपलब्ध करवा रही है। अते लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रही है। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 ਬਿਲੀਅਨ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर। याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटन यार, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉग से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉग, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ਭਰਤਮਾਨ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਯੁੱਧ। ਵਾਈਟ ਹਿਲ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੀਰੋ ਦੇਖ ਕਰੋ ਇਨ ਐਂਡ ਐਜ਼ ਸਰਪੰਚ।
1: ਸਰਪੰਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ।
0: ਸਰਪੰਚ ਅਡੀਸ਼ਨਲੀ ਸਟਾਰਿੰਗ ਜੈਸਮੀਨ ਬਾਜਵਾ, ਗੁਰਬਾਲ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਸਰਬਜੀਤ ਚੀਮਾ। देखो सरपंच 10 जुलाई नु तुहाडे नेड़े सिनेमा घरां च।
2: हनी ये तुम कहां ले जा रही हो, ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
3: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
2: ऐसा क्या खास है वहाँ?
3: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम्ब, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
2: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
3: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर, या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस, कंप्लीट लीगल पेपर वर्क, मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी, रिमेम्बर द नेम परमानंद, ये प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता। लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

इंडियन फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्टवेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan.
4: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
6: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
7: Hi, मैं हूँ Tulsi Kumar और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से.
8: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
9: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक शोक सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मतिंतार नैनी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। स्ट्रोक बैक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रॉय सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: फिल्मों के क्लाइमैक्स में हीरो जीतता है और लड़की ले जाता है, असल जिंदगी में विलेन।
1: ए विलेन।
2: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घर की उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लिए नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है अते लोड़वंदां लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

0: दिन साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य आपकी सेवा में वेदवाणी।

आप सुन रहे थे कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ अर्थात इस्कॉन की ओर से प्रस्तुत कार्यक्रम वेदवाणी को, जिनमें हम आपकी सेवा में आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक और पारिवारिक उद्देश्य को लेकर आते हैं हर रविवार को सुबह 8 बजे से और हर बुधवार को सुबह 5 बजे से आपके लिए।

वेलकम बैक टू रेडियो प्रसवानी में एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए इसी के साथ टॉप न्यूज हेडलाइंस जान लेते हैं। क्वींसलैंड गवर्नमेंट यूथ क्राइम से जुड़े बेल लॉस को और सख्त बनाने की तैयारी कर रही है। वहीं पर ब्रिस्बेन में आज शाम स्टेट ऑफ ओरिजिन गेम 3 का यानी कि गेम 3 का बड़ा डिसाइडर सनकॉर्प स्टेडियम में खेला जाएगा। फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है और सिटी में हैवी ट्रैफिक की संभावना भी दिख रही है। वहीं पर ब्रिस्बेन एयरपोर्ट और एविएशन सेक्टर सस्टेनेबल फ्यूल इनिशिएटिव्स पर काम को आगे बढ़ा रहे हैं। वहीं पर जो एनवायरनमेंट है उसके लिए एक पॉजिटिव स्टेप माना भी जा रहा है। वहीं पर अगर हम वेदर अपडेट की बात करें तो ब्रिस्बेन में आज हल्का क्लाउडी और कुछ एरियाज में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो अम्ब्रेला साथ जरूर रखें, भूलें ना। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेनी।

And that's closer.

हाँ जी, इस गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब दोस्तों, आप कहीं बाहर निकले तो ट्रैफिक अपडेट तो जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, ब्रिस्बेन में आज हल्का सा बात करें तो सनकॉप स्टेडियम या फिर सीपीडी यानी कि सीबीडी की तरफ जो है ट्रैवल कर रहे हैं अगर आप सभी, तो एक्स्ट्रा ट्रैवल टाइम लेकर निकलिएगा जरूर, क्योंकि स्टेट ऑफ ऑरिजिन के चलते रोड्स और पब्लिक ट्रांसपोर्ट दोनों बिजी रह सकते हैं, तो आज थोड़ा सा ट्रैफिक आप सभी को दिख सकता है। वहीं पे दोस्तों, जैसे कि हमेशा हम बात करते हैं मोटिवेशन थॉट विचार की, क्योंकि देखिए जी, विचार तो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छे विचार लाएंगे, पॉजिटिव रहेंगे, इन्वायरमेंट भी हमारा पॉजिटिव रहेगा। तो दोस्तों, आज का विचार है, हर नया दिन एक नई शुरुआत होती है, कल की गलतियों को पीछे छोड़कर आज अपना बेस्ट दीजिए। हाँ जी, पुरानी चीजों में अटके ना रहें, क्योंकि जब हम गलतियों के बारे में सोचते रहते हैं ना, उससे हमारा समय तो है वो तो रुकता नहीं है, वो बीतता रहता है और आज भी हमारा बेकार हो जाता है। तो अब वक्त हो गया है आप सभी को एक सुपरहिट बॉलीवुड सॉन्ग सुनाने का। म्यूजिक इंजॉय कीजिए, कहीं मत जाइए और आप सभी सुनते रहिए रेडियो ब्रह्मवाणी, ओनली ऑन चांदनी का सफर।

वेलकम बैक है दोस्तों। तो आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे चानी जैन। उम्मीद करती हूं आपका ये प्यारा प्यारा सा वेडनेसडे है और चानी का सफर है और ये प्यारी सी मॉर्निंग है स्माइल के साथ ही शुरू हुई है और शुरू होते होते आपका जो ये वेडनेसडे का एंड है ना वो भी हंसी के साथ ही एंड होगा। जी हाँ, तो चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के कुछ अपडेट्स, साथ में ब्रिस्बेन की भी आप सभी को न्यूज अपडेट्स जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ब्रिस्बेन में आज जैसे मैंने आपको बताया स्टेट ऑफ ओरिजिन गेम 3 को लेकर पूरा माहौल जो है उत्साह से भरा हुआ है। स्टेडियम के आसपास सिक्योरिटी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस को भी बढ़ाया गया है। वहीं पर दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के कई हिस्सों में कॉस्ट ऑफ लिविंग पर डिस्कशन भी जारी है और फैमिलीज को बजट प्लानिंग पर फोकस करने की सलाह दी जा रही है। वहीं पर अगर हम वर्ल्ड हेडलाइंस की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल है एजुकेशन और हेल्थ केयर में तेजी से बढ़ रहा है। वहीं पर कई देशों में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर नए इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं। और अगली खबर की बात करें हेडलाइन की तो इंटरनेशनल टूरिज्म में लगातार रिकवरी देखने को मिल रही है। तो दोस्तों स्पोर्ट्स अपडेट भी जानेंगे लेकिन थोड़ी देर बाद इस ब्रेक के बाद, यानी कि इस ब्रेक में आपको सुनाएंगे प्यारा सा गीत ओनली ऑन रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुन रहे हैं रेडियो प्रिस्वानी। तो स्पोर्ट्स अपडेट की अगर बात करिए तो आज की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स हाइटलाइट ये है कि स्टेट ऑफ ओरिजिन गेम 3, जिसका कि क्रिकेट और फुटबॉल फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, वहीं पर विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप के एक्साइटिंग मैचेस भी जारी है और दुनिया भर के फैंस जो हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अब देखिए जी, इन सब चीजों को देखने के लिए और हमें घूमने फिरने के लिए जी हेल्थ का तो थोड़ा सा ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, विंटर सीजन में अपनी इम्यूनिटी स्ट्रांग जरूर रखनी चाहिए। गर्म पानी हमेशा हर प्रोग्राम में बोलते हूँ आपको, गर्म पानी जरूर पिए, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खाएं, 20-30 मिनट्स जो है वॉक या फिर एक्सरसाइज जरूर करें। ये इसलिए मैं याद करा देते हूँ क्योंकि मैं आपकी अलार्म हूँ। जी हाँ, ये याद करना ना, हम मोस्टली हेल्थ की बात ही हम लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन ये याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जानेंगे थोड़ी ही देर बाद यानी कि इस गीत के बाद बॉलीवुड की कुछ बातें। आप बस जुड़े रहिए मेरे साथ रेडियो ब्रिस्वानी में।

एक बार फिर से आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी जुड़े हुए हैं अपनी दोस्त चांदनी जैन के साथ ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मानी। प्रोग्राम चल रहा है चांदनी का सफर। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप सभी की ये प्यारी प्यारी सी मॉर्निंग प्यारी ही बीत रही होगी। तो दोस्तों अगर हम बॉलीवुड बस की बात करें तो बॉलीवुड में ना कई नए प्रोजेक्ट्स और सॉन्ग्स के अनाउंसमेंट्स जो है वो हो रही है। अगर आपको रोमांटिक पार्टी या फिर ओल्ड क्लासिक सॉन्ग्स पसंद है तो आज का प्लेलिस्ट आपको जरूर पसंद आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको ना बहुत सारी यानी कि अगर हम गजल्स की बात करें, ओल्ड सॉन्ग्स की बात करें, क्लासिक सॉन्ग्स की बात करें, वो सारे सॉन्ग्स आपको मिलते हैं चांदनी के सफर प्रोग्राम में। तो दोस्तों इसी के साथ गाने तो मैं सुनाती रहूंगी, लेकिन चलिए एक सवाल आप सभी के लिए है। अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक जगह फ्री ट्रिप मिले, ध्यान से सुनिए, अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में एक जगह फ्री ट्रिप में मिले तो आप कहाँ जाना पसंद करेंगे और क्यों, जल्दी से आप मैसेज करके जरूर बताएं ताकि मुझे भी पता चले कि भाई आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं ये प्यारा सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो ब्रह्मवाणी।

0: वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में एक बार फिर से तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो ये प्यारा सा गीत अभी आप सभी सुनकर आए हैं, ऐसे ही गीत आप सभी को सुनने को मिलते रहेंगे। तो दोस्तों देखिए, वक्त का पता ही नहीं चलता कब वक्त खत्म हो जाता है, यानी वक्त तो खत्म नहीं हो जाता लेकिन प्रोग्राम का वक्त तो जी खत्म होता ही है। इसी के साथ दोस्तों, खुश रहने का सबसे आसान तरीका पता क्या है? हर छोटी खुशी के लिए शुक्रगुजार रहना। जी हाँ, हमें हर छोटी छोटी चीज के लिए शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि हर छोटी छोटी चीज भी सबके नसीब में नहीं होती। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये मॉर्निंग शो यानी कि जानी का सफर यहीं पर समाप्त होता है। अपनी दोस्त को दीजिए इजाजत, अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए और जी रेडियो ब्रिस्वानी सुनना ना भूलिए। हैव अ वंडरफुल वेडनेसडे, बाय बाय, टेक केयर, सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।
1: अरे अरे ए ए

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम आई। सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। F-16 और सुखोई 30 ने इंडोनेशिया में किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विमान का स्वागत। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया पहुंचे हैं और इसके साथ ही उनकी तीन देशों की यात्रा की शुरुआत हुई। जकार्ता में उनके आगमन पर औपचारिक स्वागत किया गया, जिसमें इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो ने हवाई अड्डे पर एक खास पहल के तहत उनका स्वागत किया। चिनफिंग ने 101 सैन्य अधिकारियों को हटाया, दो वफादारों को सौंपी सेना की कमान। चीनी सेना इन दिनों बड़े बदलाव से गुजर रही है। चार साल से सेना में हो रही बड़ी छटनी के बाद अब राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने टॉप कमांडरों को भरने की प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। इस कड़ी में चिनफिंग ने अपने दो करीबी वफादारों झांग शुंगवांग और वांग गैंग को जनरल के तौर पर नियुक्त किया है। चिनफिंग ने दो नई नियुक्ति से संकेत दिया है कि वो टॉप सैन्य कमान को अपने हिसाब से खड़ा करना चाहते हैं। श्रीलंका की जेल में कैदियों के बीच हिंसक झड़प, 25 की मौत, 100 घायल। श्रीलंका से एक बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ निगोम्बो शहर स्थित एक जेल में कैदियों के दो गुटों के बीच भीषण हिंसक झड़प हो गई। इस खूनी संघर्ष में जेल के चार सुरक्षा कर्मियों समेत 25 कैदियों की मौत हो गई है, जबकि 100 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बता दें, श्रीलंका की जेल में हुए इस भीषण झड़प को पिछले 5 सालों का सबसे घातक जेल दंगा बताया जा रहा है। ये घटना राजधानी कोलंबो के उत्तर में स्थित नेगोम्बो शहर की मुख्य जेल में हुई। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। भारत में लॉन्च नहीं होगा व्हाट्सएप का यूजर नेम फीचर। फोन नंबर साझा किए बिना चैट की सुविधा प्रदान करने वाले विवादित यूजर नेम फीचर पर मेटा के मालिकाना हक वाले व्हाट्सएप को अपना जवाब देने के लिए और समय दे दिया गया है। इसके साथ ही कंपनी ने सरकार को आश्वस्त किया है कि जब तक इस मामले पर बातचीत पूरी नहीं हो जाती, तब तक वो भारत में इस फीचर को लॉन्च नहीं करेगा। 100 दिनों में बनी स्वदेशी यूग्राम राइफल ने पास किए सभी टेस्ट, CAPF में शामिल करने की तैयारी। भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देते हुए तेलंगाना के स्टार्टअप द्वीप डिफेंस ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। दरअसल तेलंगाना स्थित स्टार्टअप द्वीप डिफेंस द्वारा विकसित यूग्राम युद्ध राइफल ने सेना और गृह मंत्रालय के सभी टेस्ट पास कर लिए हैं। सिर्फ UPI ही नहीं, भारत के डिजिटल ब्लूप्रिंट पर भी इंडोनेशिया की नजर। इंडोनेशिया यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस UPI को अपनाने और भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का और ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश बनने जा रहा है। फ्रांस, सिंगापुर और UAE जैसे कई देशों ने मुख्य रूप से भारतीय यात्रियों और व्यवसायियों के लिए क्रॉस बॉर्डर पेमेंट आसान बनाने के लिए UPI को अपनाया है, लेकिन इंडोनेशिया के इरादे इससे कहीं ज्यादा बड़े हैं। वो भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल अपने खुद के सॉवरेन डिजिटल इकोसिस्टम को बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट के तौर पर करना चाहता है। UPI को जोड़ने के अलावा उसका मकसद कॉमर्स, डिजिटल पहचान और पब्लिक सर्विस के लिए ऐसे इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म बनाना है, जिन्हें बाद में आसियान क्षेत्र में एक्सपोर्ट किया जा सके। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

रेडियो ब्रिजबानी के श्रोतागण, परमानंद से एक सुख सूचना सुनिए। दुख के साथ सूचित किया जाता है कि मतिंतार नैनी फिजी के स्वर्गीय पंडित राम जग शर्मा और सुशीला शर्मा के पुत्र और ब्रिस्बेन के अंजलि शर्मा के पति वेलिंगटन पॉइंट ब्रिस्बेन के योगेश शर्मा के देहांत गुरुवार 2 जुलाई शाम 6:30 बजे पीए हॉस्पिटल ब्रिस्बेन में हो गई। दाह संस्कार बुधवार 8 जुलाई शाम 12:30 बजे से हेमंत क्रेमेटोरियम 500 हेमंत टिंगलपा रोड हेमंत में किया जाएगा। स्ट्रोक वेक करने तथा अधिक जानकारी के लिए आप अंजलि शर्मा जी को 0400-459-772 पर या रॉय सिंह जी को 0411-022-602 पर कॉल कर सकते हैं। इसी के साथ शोक सूचना समाप्त हुआ।

0: और देखिए दोस्तों, अगर आपका फोन डाउन हुआ है, अभी भी काम इस पर चल रहा है, और साथ में कह रहे हैं कि एवरी नाउ एंड देन आप अपने कंप्यूटर अपने फोन को रिबूट करिए, यानी ऑफ करके फिर से ऑन करिए, और कुछ लोगों का भी फोन चलने लगा है। सो अगर आपका नहीं चल रहा तो हाउ वुड यू बी लिसनिंग टू मी, अगर आपका नहीं चल रहा, रेडियो सुन रहे होंगे आप शायद, ठीक है, तो उसको आप रिबूट करिए अपने फोन को, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। कुछ सेटेलाइट से संबंध है आई थिंक टू द सेटेलाइट, और अगर आप बिलोंग कस्टमर है और या LD कार्ड आपने दिए हैं, ये लोग टेलस्टार का प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, तो यू विल बी अफेक्टेड टू। या ऑलराइट, एंड वंस अगेन थैंक यू एवरीवन, जो जो लोग इंटरनेट से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है इस तरह से हमारा साथी बना रहे हैं आप,
1: थैंक यू,
0: थैंक यू। और व्हाट एल्स इज हैपनिंग, ओके ओके ओके, थैंक यू विनी। ऑलराइट, आई हैड अ सॉन्ग, लेकिन Mine is a bit slower than yours.
1: I love this song. Okay? Let's enjoy it.

0: लल्लू बनाकर ये इंडिया में यूज किया जाता, लेकिन फिजी में तो कोई दूसरा वर्ड यूज करते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, समझने वाले समझ गए, जो ना समझे वो ना जाने। Oh my goodness, where do we get all this?
1: What are you up to today?
0: I don't know. Okay, did I play this song?
1: Which song? No.
2: It's Valentine's Day.

0: ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: LKR Events proudly presents Once Upon a Time World Tour 2026. This July, experience the magic live. Ustad Rahat Fateh Ali Khan with his son Shahzaman Ali Khan live in concert, performing his greatest Bollywood and Qawwali hits. 23rd July 2026 at Brisbane Central Main Auditorium. Book your tickets now at drytickets.com.au. Presented by LKR Events, bringing unforgettable experiences to Brisbane.
2: Priya, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है, सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
3: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
2: अच्छा, वो क्या?
3: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
2: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
3: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी।
4: डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
5: The Total Focus Group Australian International Masters 2026, hosted by Queensland Fiji Football Association QFFA, from 1st July till 5th July 2026 at the iconic Olympic FC Stadium in Yeronga, Brisbane, with 32 teams already confirmed participating across Fiji, Australia, New Zealand, Canada and United States. Festival atmosphere for the whole family, live entertainment, kids play zone and food stalls. For more information, contact President Jitendra Prasad, Chairman Imroz Mohammed and Secretary Aman Kumar, connecting the community. And a big thank you to our major sponsor, Total Focus Group.
6: Okay, chaliye gana main baja deta hu, thoda sa hum raftaar ko badal rahe hain, pata maloom nahi ye romantic gana hai ya kya hai, lekin aap logo ko pata hoga.

0: दोस्तों, इस गीत के साथ साथ हमारा समय होने लगा है और जो क्विज मैंने पूछा था कि कौन सी एक चीज है जो आपके पास है लेकिन बाकी लोग ज्यादा यूज करते हैं, वो है आपका नाम। ठीक है, ओके। तो सचमुच में वो आप बहुत कम यूज करते होंगे, खुद बहुत कम यूज करते होंगे, बाकी Everybody लोग तो उसको ऐसा यूज करते क्या बताऊं मैं।
1: Alrighty, we will say our namastes and goodbyes, and we will see you all tomorrow. Ye vada raha.
0: Speak for yourself.
1: Namaste, everyone.
0: What do you mean, we will see you? Say, I will most definitely see you.
1: No, what in case you, I don't me. Get up tomorrow morning?
0: Okay.
1: Okay, Tata, we bye will bye. See you all tomorrow.

यूं तो हर रात सुबह आते ही गायब हो जाती है, अंधेरा छट जाता है और हम सबकी जिंदगी में उजाला आ जाता है, लेकिन सही मायनों में सिर्फ दिन निकलने से जिंदगी रोशन नहीं होती तब तक जब तक आप न ठान लें कि आपको अपनी जिंदगी में रोशनी भरनी है। क्योंकि दोस्तों, अपनी जिंदगी का अंधेरा हम सबको खुद ही मिटाना पड़ता है। तो आइए इस नए सुबह ये वादा करते हैं कि अपनी जिंदगी के अंधेरों को खुद से दूर कर देंगे, बिल्कुल इस रोशनी की तरह जो ये नेचर हमारे लिए लेकर आया है, ये नया दिन हमारे लिए लेकर आया है। रात अब जा चुकी है, उसके जाने का वक्त आ चुका है और जिंदगी सिर्फ और सिर्फ बेहतरीन ख्वाबों से रोशन होगी। तो चलिए ऐसा ही एक ख्वाब बुनते हैं आज इट हैपेंस में रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। मैं सताक्षी आपके साथ हूँ और लेकर आई हूँ एक दफा फिर से आपके लिए आप ही का ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। नाश्ते पर अगर बातें साथ हों तो नाश्ता करने का मजा भी आता है और अगर आप अकेले कर रहे हैं तो ये एहसास भी साथ रहता है कि कोई है जिसके साथ बातें हो रही है। तो बस आपके इस ब्रेकफास्ट पर आपका साथ मैं निभाऊंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस अगले ट्रैक के साथ। K+2 रेडियो प्रस्वानी, आप सबको एक बार फिर से सताक्षी की ओर से प्यार भरी गुड मॉर्निंग।

गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। रेडियो प्रस्थानी पर सताक्षी के साथ आप एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो इट हैपेंस। और जिनका आज हैप्पी बर्थडे, बर्थडे बेबीज, जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो और बस बस बस जिंदगी में खुशियां बनी रहें, ठीक इसी तरह से जैसे आज हैं। आपकी जिंदगी हमेशा रोशन रहे और वो हर जायज ख्वाहिश मुकम्मल हो जो आप रखते हैं, और बस इतनी खुशियां हों आपकी जिंदगी में कि आप समेट ना पाए। इसी विश के साथ विश करते हैं उनको जिनकी आज है वेडिंग एनिवर्सरी और जिनकी शादी की सालगिरह होती है। उनसे मैं हर रोज ये कहती हूँ कि हर दिन खुशियों से भरा नहीं होने वाला है, हर दिन आपके जिंदगी में वो प्यार नहीं होने वाला है, क्योंकि जब एक रिश्ता जुड़ता है तो बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी अपने साथ लाता है और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने साथ लाता है। तो ये सारी चीजें जो है, नाराजगी, खुशियां, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, जिम्मेदारियां, इन सबके साथ आपको हर रोज होकर गुजरना है। लेकिन इन्हीं में जब आप एक दूसरे का हाथ मजबूती से थामे खड़े रहते हैं तभी वो रिश्ता मुकम्मल हो पाता है। तो आपके रिश्ते में वो मजबूती हमेशा बनी रहे, यही हमारी विश है। और जिनके लिए भी आज स्पेशल और खास दिन है, यानी जिनकी जिंदगी में कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ खास होने वाला है, या उन्हें आज के दिन से कुछ उम्मीदें हैं, उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबके लिए डेडिकेट करेंगे ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड, रेडियो प्रस्थानी, सुनते रहिए मेरे साथ इट हैपेंस।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: राहुल, वीरे तेरे केस दा की होया?
3: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हूं। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
2: Go for the best, Vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience aa te law di intricacies nu handle karan ch vi oh expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and Associates de lawyers da vast experience aa. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
3: Thanks, Tanvire. I'm so relaxed to hear that.
2: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं इट हैपेंस और आपके साथ इस सफर में सताक्षी है। यू नो, कभी सोचा है कि अगर आप एक तरफा कोशिश कर रहे हैं एक रिश्ते को बचाने की, तो आप क्या बचा लेंगे उस रिश्ते में? मतलब आप उस रिश्ते को निभाने की कोशिश करते रहेंगे और सामने वाला उस रिश्ते से भागता रहेगा। कोई भी रिश्ता दुनिया का कभी भी एक तरफा नहीं चल सकता है। उस रिश्ते को निभाने के लिए, उसे चलाने के लिए, उसे बचाने के लिए दो लोगों के होने की बहुत जरूरत होती है। यू नो, हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार हम ना निभा लेंगे, हम ये रिश्ता जो है ये मैनेज कर लेंगे, कोई बात नहीं। अगर दूसरा इंसान एफर्ट्स नहीं डाल रहा है तो हम है ना, हम उस रिश्ते को बहुत खूबसूरती से निभा ले जाएंगे। लेकिन कब तक? यू नो, एक टाइम ऐसा आता है जब आपको रिटर्न नहीं मिलता। आप कुछ भी उस रिश्ते में कर रहे हैं, अपने सारे एफर्ट्स डाल रहे हैं और आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा, तो आपका भी मन खट्टा होने लगता है, है ना? आप भागते रहते हैं उस इंसान के, उस रिश्ते के पीछे, और वो रिश्ता आपसे भागता रहता है। तो बहुत बेहतर है ऐसे रिश्ते को बचाने से कि खुद को बचा लीजिए। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ एंजॉय कीजिए और सुनते रहिए इट हैपेंस सिर्फ और सिर्फ आपके अपने रेडियो बिस्वानी।

सो वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ आप हैं और मेरे साथ सुन रहे हैं आपका अपना ब्रेकफास्ट शो। भगवान श्री कृष्ण ने एक बहुत ही खूबसूरत बात कही है, उनसे जो दूसरों के सामने प्रेजेंट करते हैं कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है और मुस्कुराने की कोशिश करते हैं और वहीं उनका दिल अंदर से रो रहा होता है। इन लोगों से भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि दूसरे के सामने अपना तमाशा बनाने से बेटर है कि अपना दर्द किसी से मत कहो। तुम्हारा हाथ मैंने थामा है तो तुम्हारी मुश्किलों का हल भी मैं जरूर निकालूंगा। कई बार हमें लगता है कि हर कोई हमारा अपना है, लेकिन देखा जाए तो आपने भी रियलाइज किया होगा कि अगर आप किसी से अपनी तकलीफ कहते हैं तो कई बार वो तकलीफें जो हैं वो न्यूज़पेपर हेडलाइंस बन जाती हैं, यानी दूसरों तक आराम से पहुंच जाती हैं। और आपको लगता है कि यार हमने तो इसे अपना समझकर अपनी बात कही थी। हर वो इंसान जिसे आप अपना समझें वो आपका अपना नहीं हो सकता, है ना, लेकिन ईश्वर जरूर आपका अपना है और वो पूरी ईमानदारी से आपके साथ रिश्ता निभाता है। तो उसी ऊपर वाले के नाम चलिए ये ट्रैक सुनते हैं, एंजॉय कीजिए और हाँ कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ सुनते रहिए आपके अपने इस ब्रेकफास्ट।

वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ आपके अपने रेडियो प्रस्थानी पर। और इट हैपेंस में अभी हम आ गए हैं, जी हाँ, आप जानते हैं, गानों की हैट्रिक लेकर। सो गानों की हैट्रिक में आज का पहला ट्रैक बिना देर किए आइए सुनवाती हूँ आपको।

गानों की हैट्रिक आप सताक्षी के साथ एंजॉय कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं मेरे साथ कई बेहतरीन और खूबसूरत नगमे। तो चलिए गानों की हैट्रिक में फिलहाल एंजॉय कीजिए अगला ट्रैक एंड कीप लिसनिंग टू रेडियो प्रिस्फाइन।